मेरी वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17

0: यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी पारंपरिक देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए शांता सक्सेना के स्वर में सूरदास का ये भक्ति पद।

हरि ओम शरण के स्वर में अभी आपने सुना उन्हीं का लिखा भजन। लीजिए अब सुनिए बेला सुलाखे के स्वर में सोस लायलपुरी का ये भजन।

0: अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में भजन। इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री हरीश कोटक का है।
1: अक्सर सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश में हर 50 गांव पर भाषा बदल जाती है। इसे भाषा की विशालता भी कह सकते हैं। भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, ज्यादातर की उनकी अपनी लिपि भी है। इस तरह इनका साहित्य लिपिबद्ध है। गर्व से कह सकते हैं कि देश की सभी दिशाओं में, क्षेत्रों में महान साहित्यकारों ने जन्म लेकर साहित्य को दिव्यता प्रदान की है। गद्य और पद्य में समान रूप से कालजयी रचनाएं हुई हैं, जो आज भी अजर अमर हैं। कई रचनाकारों ने तो विदेशी भाषा में भी लेखन किया है, उसी तरह खासकर विदेशी साहित्य का अनुवाद भी किया है। ज्यादातर साहित्य, विशेषकर हमारा साहित्य, दूसरी भाषाई लोगों में पढ़ा ही नहीं गया है और न ही बोलचाल में आया है। बहुतेरे वक्ताओं द्वारा अपने वक्तव्य या विद्वत जन अपने लेखों में कुछ एक किंतु निश्चित विभूतियों के ही वाक्यांश या अवतरण का उल्लेख करते हैं। इससे उनकी प्रस्तुति अलंकृत हो जाती है। अच्छा भी है। विशेष उल्लेखनीय कि विदेशी कवि, लेखक, नाट्यकार, दार्शनिक आदि मनुष्यों के वाक्यांशों का प्रयोग बड़े गर्व के साथ करते हैं, किंतु हमारे देश की कुछ गिनी चुनी विभूतियों का ही उल्लेख होता है। कई बार तो जब इनके अतिरिक्त कोई नाम आता है तो श्रोताओं को आश्चर्य होता है, क्या वाकई इतना गूढ़ और वैभवशाली कथन हमारे कथित भारतीयों का है। निसंकोच कहना होगा कि हमारा देश इस संदर्भ में भी धनी है। जाने कितने ही विद्वानों का साधारण जनों को परिचय ही नहीं, कारण हम उनकी भाषा नहीं जानते, उन भाषाओं का ज्ञान नहीं है, अतः संपर्क में नहीं रहे। दूसरी भाषा जानने बोलने की भी एक ओर तो ललक होनी चाहिए, पर दूसरी ओर एक सामान्य व्यक्ति कितनी भाषाएं जान सकता है। मातृभाषा के अतिरिक्त भाषा का महत्व हमारे पड़ोसी देश चीन के चाउविन लाई ने लाल चौक से सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि दुश्मन को जितना हो तो उसकी भाषा में बोलो, इसे हम सकारात्मक रूप में लें तो अनजान व्यक्ति को अपना बनाना हो तो उसकी भाषा में बात करेंगे तो आत्मीयता स्वतः अंकुरित होगी। सम्मुख मन में आपके लिए सद्भाव जागेंगे और वो आशातीत आपकी या आप उनकी सहायता करेंगे। बहरहाल मुद्दा ये है कि हम अपने ही देशवासियों की रचनाएं कैसे पढ़ें, जिससे हमारे ज्ञान का आकाश और भी विस्तारित हो, जो किसी सुखद आश्चर्य से कमतर नहीं होगा। यदि एक मुहिम योजनाबद्ध तरीके से चलाई जाए, जिसके तहत दक्षिण भाषी साहित्य का अनुवाद उत्तर, पूर्व और पश्चिम की मुख्य भाषाओं में किया जाए, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम और उत्तर के साहित्य का अनुवाद दक्षिण की भाषाओं में किया जाए, जब लोग एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हमारे देश की ही अन्य भाषाओं का साहित्य कितना समृद्ध है, कितना गहरा, कितना ज्ञानवर्धक, कितना व्यापक है। सभी में विभिन्न विषयों जैसे कि कला, विज्ञान, वीरता, इतिहास, वास्तु, निर्माण, परंपराएं, धार्मिक मान्यताओं का वैचारिक और व्यवहारिक आधार, बाल साहित्य, संगीत, चित्रकला आदि सभी विधाओं पर प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। इतना कि आकाश की पृष्ठभूमि भी कम पड़ेगी। जब इसे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा ये पढ़ा जाएगा तो लोग एक अदृश्य डोर से धीरे धीरे एक दूसरे से बंधते चले जाएंगे। अतः योजना के क्रियान्वयन के लिए आवाहन करना होगा। साथ ही विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर अनुवादित साहित्य, नाटक, गीत, गजल प्रस्तुत करेंगे तो इसका भावनात्मक प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। अवश्य ही ये योजना निजी संस्थाओं के साथ राजाश्रित भी होनी चाहिए। इस भगीरथ कार्य की फलश्रुति तभी संभव है। ये अनुवाद संपूर्ण भारत को एक अटूट सूत्र में बांध पाएंगे। हमारा दर्शन कह लें या राष्ट्र का सर्वोच्च लक्ष्य कह लें, अनेकता में एकता को साकार करेंगे। देशवासी एकजुट होकर भाषाई जातीय भेदभाव पहनावे को भूलकर नूतन भारत सुदृढ़ भारत गढ़ेंगे। साहित्य के सेतु पर धैर्य पूर्वक चलकर जब हम अनेकता की वैतरणी पार करेंगे तो उस पार एकाकार संपूर्ण भारत के दर्शन होंगे। बस अनुवाद के लिए एक अलख जगाने की आवश्यकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्री हरीश कोटक का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। कलाकार थे सुरेश वाटकर। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए खेत के लाभदायक कीट। इस विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर खूबी राम साहू।
1: नमस्कार किसान भाइयों, हम किसान भाइयों को खेती में जो लाभदायक होते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे और उन कीड़ों को हम कैसे अधिक से अधिक बढ़ा सके ताकि हमारे अधिक से अधिक किसानों को कैसे हम दे सके इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं जैसा बताना चाहूँगा, हमारे कीड़े जो नुकसान करने वाले कीड़े होते हैं उसको जो खाते हैं उसको हम लाभदायक कीट बोलते हैं। जो नुकसान करते हैं वो कीड़े मुख्य रूप से एडल्ट ये ज्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन वो इल्ली और एडल्ट कैसे बनते हैं या प्रौढ़ कैसे बनते हैं, पहले चूंकि सभी कीड़ों को हम जानते हैं पहले वो अंडा देती है, अंडा देने के बाद इल्ली बनती है, इल्ली बनने के बाद कई एडल्ट बन जाते हैं और कुछ कीड़ों में प्यूपा भी बनता है। ये जो हमारे लाभदायक कीट है वो कीट कई सारे कीट जो होते हैं जो कीड़े के अंडों को खाते हैं, कुछ कीड़े कुछ इल्ली को खाते हैं और कुछ एडल्ट को भी खाते। तो ये जो खाते हैं उसके हिसाब से जो हमारे जो लाभदायक कीट है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे जो जमीन के अंदर अंडा देते हैं तो हमारे जो थैलसना वाले जो हमारे लाभदायक कीट हैं जिसको हम थैलसनिक बोलते हैं, थैल में हमारे जो नुकसान करने वाले कीट है उसको मार के हमारे किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे कीड़े हमारे खासकर जैसे जिसको बोलते हैं रो बीटल अपोंसिया जिसको बोलते हैं, रो बीटल आप सब जानते होंगे जिसको चुड़चुड़ी कीड़ा बोलते हैं आप सब किसान भाई, वो हमको फायदा करते हैं। हमको समझ में नहीं आता बरसात में आता है वो चुड़चुड़ी कहाँ से आ गया, हमको कभी कोई खुजली होती है उससे होता है, लेकिन वो हमारे किसान के लाभदायक कीड़े हैं जो हमारे कीट को नीचे से पकड़ के खा के ले जाते हैं उसके अंडा और उसके इल्ली को और हमको फायदा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पेड़ के ऊपर जो रहते हैं वो कीड़ों को खाते हैं, जैसे आप देखे होंगे सतबुंदिया कीड़ा जिसको बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं, वो हमारे किसानों के जो खासकर जो माहू कीड़ा लगता है जिसको हम एफिड बोलते हैं उसको धीरे धीरे खा के पूरा खत्म कर देता है। ना केवल उसका एडल्ट बल्कि उसके इल्ली भी खाता है उसको, वो खा के धीरे धीरे उसको फायदा पहुंचाता है। तो ऐसे कीड़े हैं। इसी प्रकार से आप देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई या डैमसिल फ्लाई जिसको हम छत्तीसगढ़ी में फुरफुंदी बोलते हैं, ये आप देखे होंगे जब भी पानी गिरता है अचानक कहाँ से आ जाता है। तो ये क्या होता है, जमीन के नीचे इसका अंडा दिया रहता है और वो अंडे उसके इल्ली जो है हमारे नुकसान करने वाले कीड़े को खाते हैं और इसके एडल्ट जो आकाश में उड़ते रहता है वो हमारे नभ सैनिक है, वो क्या करते हैं हवा में ही जो नुकसान करने वाले कीड़े को पकड़ के खा लेते हैं। पैर होते देखोगे हेलीकॉप्टर के समान, जिसको कई बार हेलीकॉप्टर भी हम बोलते हैं, क्योंकि वो इसलिए रहते हैं ताकि वो कीड़े को पकड़ सके उसका पैर। तो इस तरह से वो हमारे फायदा करने वाले कीड़े, हमको कई बार समझ में नहीं आता है कि ये कीड़े क्या है, वो कीड़े नहीं है बल्कि हमारे लाभदायक कीट है वो। इसी प्रकार से हमारे ट्राइकोग्रामा है जिसका हम अंडा रिलीज करते हैं खेतों में, तो वो कीड़ों के अंडा रहते हैं उसके ऊपर अंडा देके उसको खत्म कर देता है। तो ये अंडा को हो गया, इल्ली को हो गया और एडल्ट, एडल्ट में बता दिया वो सब कर सकते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाए कैसे इसको हम। तो अंडा वाले जो कीट है जो जिसको हम ट्राइकोडर्मा बोलते हैं, इसके लिए किसान भाई सिंपल जैसे पहले हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं कोढ़ा, कोढ़ा में जो कीड़ा लगता है जिसको बोलते हैं कोरसायरा, उस कीड़े को हम कोढ़ा में या कनकी में किसान भाई जैसे जहाँ अंधेरा घर होता है या लेब होता है उसमें हम पालते हैं और उस पाल के कीड़ा रहता है उसको एक डब्बा में रखते हैं जिसके कारण से लगातार हम इसका वृद्धि कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे सभी किसान भाई के पास कोढ़ा और कनकी आराम से उपलब्ध हो सकता है। तो इसको आप थोड़ी सी आपके नज़दीक के जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है अपने जिले के या हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आके आप इसको सीख सकते हैं कि इसको जान सकते हैं कि कैसे हम इसको अधिक से अधिक हम इसके कीड़े के हम वृद्धि को करें। इसी प्रकार से हम जैसे मैं बताया था हमें सतबुंदिया कीड़ा जिसको लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं, तो इसको भी हम जो प्लास्टिक के डब्बे हैं इसमें हम वैसे कीड़े या वैसे पत्ती को हम डाल के सिंपल उसको रखें तो वो आराम से बढ़ जाता है। और तीसरी बात होती है जो बढ़ाने का तरीका होता है, हमारे खेत के आसपास जो मेड़ होता है मेड़ के किनारे किनारे हम पैरा बिछाएं, तो पैरा बिछाने से क्या होता है जो हमारे लाभकारी कीट मकड़ी की संख्या बढ़ती है।
0: खेत के लाभदायक कीट कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर खूबी राम साहू। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर सुनिएगा पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे परिचर्चा, विषय होगा आज का आदमी क्यों हो रहा है स्वार्थी। प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर उषा दुबे, श्रीमती सरोज मिश्रा और श्री अनुराग झा। संचालन करेंगे डॉक्टर हनुमंत यादव। सुबह 9:00 सुनिएगा वार्ता अपने आसमां की तलाश में, वार्ताकार होंगी श्रीमती सुजला परमार। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगी पुष्पा हंस। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगी ललिता शर्मा, चंदना सेन और साथी। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर बजाया राग तोड़ी। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित डी के दातार का वायलिन पर बजाया राग यमन और राग पंचम से गारा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दोपहर 12:00। शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। दोपहर 12:30 पर लोक रंजनी कार्यक्रम के कलाकार होंगे द्वारिका यादव और साथ ही। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम बिंदिया के आकर्षण होंगे आज की बात, इसमें अपना वक्त दूसरों को भी दें इस पर चर्चा होगी। साथ ही सुनिएगा ईमेल श्रोता पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद सखियों की, और साथ ही आप सुनेंगे दीदी की सलाह, इसमें फ़ायदेमंद और गुणकारी जामुन पर चर्चा होगी। शाम 5:10 पर युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आजकल, इसमें वर्तमान में जीना सीखें इस पर चर्चा होगी, और आप सुनेंगे क्रम दृष्टिकोण और हेलो युवाणी। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा जुन्ना तालाब के रखरखाव और संरक्षण। आज की सलाह में नैनो यूरिया और नैनो DAP का फसलों पर उपयोग, विधि एवं लाभ, इस विषय पर श्री राजेश कुमार गोले उप महाप्रबंधक विपणन की सलाह आप सुनेंगे। सुरों का सफर, पुराने फिल्मी गीतों का ये फरमाशी कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10:00। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा. अथ वार्ताः. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितम् यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलम् निष्पादनं विहितम्. प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अन्तरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते. द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तंत्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्. तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखंडतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति. अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1% भागो भविता. जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति. जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च माइगोव इति मुक्तमञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति. अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते. केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति. सहकारिता मंत्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाहः एक पेड़ मां के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति. सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति. अत्रावधौ श्री शाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सहापि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति. गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्. आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मंत्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः. मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति. सहैव प्रचलत् सुरक्षा कार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति. नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत् सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता. अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत. फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता. प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता. क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते. इति वार्ताः.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की

0: मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने ये पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणवीराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। आज नमस्कार रायपुर लेकर हाजिर हूँ मैं सौम्या रिस्वी। श्रोताओं, जीवन एक ऐसी नदी है जिसमें सुख और दुख की धाराएं साथ साथ बहती रहती हैं। कभी खुशियों की धूप मन को उजाला देती है तो कभी गम के बादल आत्मा को भिगा देते हैं। यही उतार चढ़ाव जीवन को अर्थ अनुभव देते हैं। अगर केवल सुख ही सुख होता तो उसकी अहमियत शायद कभी समझ में ना आती, और अगर केवल दुखी होता तो आशा का दीपक ही बुझ जाता। इसलिए सुख और दुख दोनों जीवन के ज़रूरी और एक दूसरे के पूरक सत्य हैं। अगर हम सुख में संयम और दुख में धैर्य बनाए रखें तो जीवन की हर परीक्षा सरल लगने लगेगी। सच्चा इंसान वही होता है जो सफलता में विनम्र रहे और विपत्ति में आशा का दामन न छोड़े।

0: अच्छा प्लीज गेम नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों के सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं जब आए पूर्ण जांच करवाएं
1: आज ही ऑपरेशन आज ही छुट्टी
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड पीली बाधा रायपुर
3: बिजली बिल और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत के बीच रायपुर की एक सोसाइटी के 27 परिवारों ने मिलकर एक अनुकरणीय पहल की है। इन परिवारों ने वर्चुअल नेट मीटरिंग परियोजना के तहत 49.2 किलोवाट और 58.2 किलोवाट क्षमता के 2 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए हैं। कुल 107.4 किलोवाट क्षमता वाले इन संयंत्रों से सभी 27 उपभोक्ताओं को वर्चुअल नेट मीटरिंग की सुविधा मिल रही है। साझा रूफटॉप सोलर संयंत्र से कई परिवारों को सौर ऊर्जा का लाभ मिल रहा है। सोसाइटी के रहवासियों के अनुसार पहले घरों में बिजली बिल अधिक आता था। इसके समाधान के लिए सभी परिवार एकजुट हुए और सामूहिक रूप से राशि एकत्रित कर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया। आज इस पहल का लाभ पूरे परिसर को मिल रहा है। सौर ऊर्जा के उपयोग से

बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान मिल रहा है। ये केवल बिजली बचत की परियोजना नहीं है, बल्कि सामुदायिक सहभागिता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है।

केंद्र सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन मांगे हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता में उत्कृष्ट योगदान पर भारतीय नागरिकों, संस्थानों और संगठनों को दिया जाता है। 31 जुलाई तक नेशनल अवार्ड्स पोर्टल पर आवेदन किए जा सकते हैं। पुरस्कार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर घोषित होगा। राष्ट्रीय एकता वो भावना है जो किसी देश के नागरिकों को भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, वेशभूषा और क्षेत्रीय भिन्नताओं से ऊपर उठकर एक सूत्र में बांधती है। ये केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं बल्कि परस्पर विश्वास, भाईचारे, समान सम्मान और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने की चेतना का प्रतीक है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में राष्ट्रीय एकता ही वो शक्ति है जो सभी नागरिकों को एक परिवार के रूप में जोड़ती है।

मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस NBEMS ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही आयोग ने PG एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इस तरह से रजिस्टर किया जा सकता है। NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और नेट PG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। नए उम्मीदवार पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन ID और पासवर्ड बनाएं। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में पर्सनल, शैक्षणिक और इंटर्नशिप से जुड़ी जानकारी भरें और फोटो, साइन और अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। सभी डिटेल्स एक बार जांच लें और आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद आवेदन फॉर्म और शुल्क रसीद का प्रिंट आउट सेव कर लें। NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सभी जानकारियां जुटा लें। 30 अगस्त 2026 को प्रस्तावित नीट PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी जारी रखें और अपने दस्तावेज रेडी कर लें। जानकारी के लिए विजिट करें NATBOERDBoard.edu.in।

रेल मंत्रालय ने सुरक्षा और रेल सेवाएं बेहतर बनाने के लिए देश भर के रेलवे जोन में 4098 तकनीकी पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। 35 तकनीकी श्रेणियों में होने वाली भर्ती में जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड 21 जुलाई से सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगा। रेलवे से संबंधित एक और जानकारी आपको दें, रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए गाड़ी संख्या 19021 और 19022 ब्रह्मपुर उधना ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल के फेरों में बड़ा बदलाव किया है। ये ट्रेन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के यात्रियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी दे रही है। पहले इस पूरी तरह LHV कोच वाली ट्रेन को सप्ताह में केवल 3 दिन चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब यात्रियों की सुविधा के लिए इसे रोजाना चलाने का फैसला हुआ है। संशोधित शेड्यूल के अनुसार गाड़ी संख्या 19021 उधना ब्रह्मपुर 9 जुलाई से और गाड़ी संख्या 19022 ब्रह्मपुर उधना 10 जुलाई से रोजाना पटरी पर दौड़ रही है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन और परिवर्तन करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक विशेष लिंक अभ्यर्थियों के प्रोफाइल डैशबोर्ड पर उपलब्ध करा दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में बदलाव के संबंध में अपने सुझाव सूचना जारी होने के एक माह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करके और पूर्व अभ्यर्थी सीधे लॉगिन करके इंटर फीडबैक बटन पर क्लिक कर अपना सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

किताबें केवल कागज पर छपे हुए शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि वे ज्ञान, संस्कार और उम्मीद की अमूल्य धरोहर होती हैं। एक पुस्तक जब अपना पहला पाठक पूरा कर लेती है, तब उसका सफर समाप्त नहीं होता। उसका वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वो किसी दूसरे जिज्ञासु मन तक पहुँचे। इसलिए पुरानी किताबों को अलमारी में बंद रखने की बजाय ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को देना सबसे सार्थक दान है। हर वर्ष असंख्य छात्र छात्राएं आर्थिक कठिनाइयों के कारण नई किताबें खरीदने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में अगर सक्षम विद्यार्थी अपनी पुरानी सुरक्षित और उपयोगी पुस्तकें उन्हें दे दें, तो ये केवल पुस्तकों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि ज्ञान, संवेदना और मानवता का उपहार होगा। एक पुरानी किताब किसी बच्चे के लिए नए सपनों की शुरुआत हो सकती है। किताबें बांटने से ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि उसका प्रकाश और अधिक फैलता है। जिस पुस्तक ने हमें सफलता की राह दिखाई, वही किसी और के जीवन में भी आशा का दीप जला सकती है। पुरानी किताबों का पुनः उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है। इसे कागज़ की बचत होती है, नए संसाधनों पर दबाव कम पड़ता है और प्रकृति के संरक्षण में भी योगदान मिलता है।

0: ऑपरेशन ठेको विधि ले बहुत कम दरमा।
1: पहले ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते पूरा जांच कराओ।
0: आज ऑपरेशन आज छुट्टी।
1: 47 बच्चन ले 100 लाख सेवा माँ।
0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली माता रायपुर।
2: वर्षा ऋतु अपने साथ हरियाली, शीतलता और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य लेकर आती है, लेकिन ये मौसम सड़क परिवहन के लिए अनेक चुनौतियां भी लेकर आता है। रिमझिम फुहारें जब मूसलाधार वर्षा का रूप धारण कर लेती हैं, तब सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, दृश्यता कम हो जाती है और दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में वाहन चलाते हुए धैर्य, सतर्कता और यातायात नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की सबसे बड़ी कुंजी होती है। बारिश में वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गाड़ी के ब्रेक, टायर, वाइपर, हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर पूरी तरह सही स्थिति में हों। घिसे हुए टायर या खराब वाइपर वर्षा के समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वर्षा के दौरान हमेशा नियंत्रित गति से वाहन चलाना चाहिए। तेज रफ्तार से चलने पर वाहन फिसल सकता है और चालक का नियंत्रण छूट सकता है। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि गीली सड़क पर ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रुकने में ज़्यादा समय लगता है। अगर वर्षा बहुत तेज हो और सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई ना दे तो हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलें। आवश्यकता पड़ने पर किसी सुरक्षित स्थान पर वाहन रोककर वर्षा कम होने की प्रतीक्षा करना अधिक समझदारी है। कभी भी पानी से भरी सड़क पर उसकी गहराई जाने बिना वाहन ना ले जाएं, क्योंकि गड्ढे या तेज बहाव गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। बारिश में अचानक ब्रेक लगाने या तेज मोड़ काटने से बचना चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना अत्यंत खतरनाक होता है। चालक का पूरा ध्यान केवल सड़क और यातायात पर होना चाहिए। सीट बेल्ट जरूर लगाएं और दो पहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहने। पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और दो पहिया वाहन चालकों के प्रति विशेष सावधानी रखें। वर्षा के कारण उन्हें भी सड़क पर संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। सुरक्षित ड्राइविंग केवल अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि अन्य लोगों के जीवन के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी, धैर्य और नियमों का पालन हमें, हमारे परिवार और अन्य लोगों को सुरक्षित रख सकता है।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: तरह बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान

0: 26 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरज जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फॉरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है।

0: ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वही नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार, मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गाँव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I'm Anuja Kumar. The headlines. 2 new anti-crime laws passed by West Bengal Assembly come into force in the state today. ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2-3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
7: Under West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odigari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
6: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
8: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
6: Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. With the exceptional performance, India reaffirmed the growing stature in science education and excellence at the international level. We have a report.
9: Delivering an extraordinary performance at the 56th International Physics Olympiad, these young physicists have brought immense pride to the nation. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anand Bendale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shri Suraya from Mumbai and Smriti Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. The achievement reflects the strength of India's Olympiad program is spearheaded by the Homi Bhabha Center for Science Education, which is a national center of the Tata Institute of Fundamental Research. With Anand Kumar, Soumya Sharan for Akashvani News, Delhi.
6: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the inaugural ceremony of the 11th Interpol Digital Forensic Expert Group meeting alongside the first International Investigators Crime Competition and Summit at the National Forensic Sciences University campus in Gandhinagar today. Our correspondent reports that the prestigious global forum will have participation from top dignitaries, including Chief Minister Bhupendra Patel and law enforcement delegates from 47 countries.
0: During the event, Mr. Shah will unveil three pioneering centers of excellence focusing on AI-powered financial crime investigation, crime scene management, and India's first media forensic center. He will also launch Asia's first indigenous cyber forensic investigation van, a Make in India mobile laboratory capable of real-time on-site evidence recovery. A major highlight of this event is the high-tech exhibition featuring cutting-edge cybersecurity tools from over 30 global giants, including Google and Cerebrite. Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, will inaugurate the Lucknow-Kanpur Expressway today afternoon. They will inspect the expressway and inaugurate it at kilometre 49 in Unnao. A report.
3: 63 kilometer long, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway with India's second longest elevated corridor is also country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. Equipped with AI-based speed enforcement, emergency call boxes at every 2 kilometers and two integrated 24/7 control rooms, the expressway is designed for speeds of up to 120 kilometer per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 40 minutes. A car journey between the two cities will cost ₹275 and two-wheelers are not allowed on it. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
6: Efforts to accelerate investment in Madhya Pradesh is gathering pace as a major event is being held in Bhopal today. It will attract leading technology companies, investors, startups, industry bodies and educational institutions from India and abroad. Our correspondent has filed this report.
2: The MP Tech Growth Conclave 3.0 will be held in Bhopal today. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will inaugurate the event. The main focus of the conclave is to promote investment in global capability centers, data centers and the semiconductor sector. The Chief Minister will also share the state government's vision फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
6: In Bihar, heli and air tourism services are being launched today. Chief Minister Samrat Chaudhary will inaugurate it from Patna. In the first phase, the destinations included under the initiative are Valmiki Nagar in West Champaran district, Ma Mundeshwari in Kaimur district, and Rajgir in Nalanda district. More from our correspondent.
10: The service will be operated jointly by the Department of Tourism and Department of Civil Aviation. From today, people can make bookings online. Under the scheme, with financial support from the state government, tourists can book tickets at subsidized rates. The state government will provide a subsidy of up to ₹15,422 per ticket. The helicopter tourism service will commence on 18th July and will operate every Saturday and Sunday. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
6: The India Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days, and isolated heavy falls over east Uttar Pradesh during 4 to 5 days. Fairly widespread to widespread rainfall is likely over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till the 18th of July. The weatherman said subdued rainfall activity is likely over the plains of northwest, west central and over south peninsular India during next 6 to 7 days. The United States has launched a fresh round of military strikes against Iran. U.S. Central Command, CENTCOM, said the operation is intended to further degrade Tehran's ability to target civilian mariners and commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. In a post on X, CENTCOM said the strikes were carried out on the direction of the commander-in-chief to hold the Iranian forces accountable. The latest strikes come amid heightened tensions in the Gulf region. According to Iran's press TV, 3 explosions were heard in the southern Iranian cities of Jask, Bandar Abbas and Sirik following the U.S. strikes. U.S. President Donald Trump asserted that Strait of Hormuz remains open to commercial traffic, dismissing Iranian claims of control. He also signaled a complete collapse of recent diplomatic efforts with Iran, revealing that a tentative agreement with Tehran has been shattered by Iranian military strike against commercial vessel. Meanwhile, New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. In Thailand, at least 27 people have been killed in a fire that tore through a bar in Bangkok. The deceased include 9 men and 18 women. More than 60 people are being treated in hospital. Firefighters were called to the scene just after midnight last night and discovered patrons fleeing through the flame-enveloped front door of the venue. On to sports. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed Germany's Alexander Zverev 6-7-7, 7-6-2, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club London last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon's men's singles title and his fifth Grand Slam crown. Sinner became the 10th player to successfully defend the Wimbledon men's singles title. England will resume the second innings from 130-6 in the historic one-off women's test at the Lord's against India this afternoon, resuming the penultimate day with an overall lead of 269. India declared their second innings at 341-7 at the stroke of tee. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's. In our bilingual live phone-in program, Public Speak, at 9:30 tonight, we will bring you an insightful discussion on significance of rainwater harvesting for water security and groundwater recharge with Archana Verma, Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481 and 011-2371-7117 onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044 or post your questions on X with the hashtag AskEIR. And now, before a look at today's newspapers, it's over to Shah.

0: Chopra.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have reported about the re-escalation of the US-Iran crisis and an Indian seafarer missing as a ship hits in Hormuz. The Times of India writes, MEA condemns attack on tanker off Oman coast. 11 Indians rescued, one missing. The Tribune mentions the Joint Parliamentary Committee's recommendation for suspension, not removal of PMCMs after 30 days in jail. To make a presentation on the road ahead, CDS may soon present theatrization strategy, states Hindustan Times. An editorial with the headline, Needed a New Deal, in the Tribune writes about India requiring an initiative like the Manhattan Project where best minds are put together. It refers, India's private sector, if given the proper environment, is more than capable of being globally competitive. Foreign investors set to get a faster arbitration route with country-specific flexibility likely in new bilateral investment treaty taking shape, cites Financial Express. Coach Mitra app to track boarding, railway roadmap and counseling to improve passenger behavior, reports the Indian Express. Small towns beat big cities in rooftop solar adoption, cites the Times of India. And finally, in a first-of-its-kind project, Washington may soon house India's story through immersive technology, writes the Pioneer, presenting India's contributions of its journey from Indus Valley civilization to a nation on the rise to the global audience. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And in news just in, the mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today via Vietnam Airlines flight VN979. The Indian Embassy in Vietnam in a social media post said that the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two new anti-crime laws passed by West Bengal Assembly come into force in the state today. ISRO successfully carries out three major tests of Gaganyaan crew module systems. Five Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number one rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. U.S. launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: लीजिए सुनिए परिचर्चा आज का हर में क्यों हो रहा है स्वार्थी प्रतिभागी हैं प्रोफेसर उषा दुबे श्रीमती सरोज मिश्रा और श्री अनुराग झा संचालन कर रहे हैं डॉक्टर हनुमंत यादव
3: आज का हर में क्यों हो रहा है स्वार्थी इस परिचर्चा में हमारे साथ तीन प्रतिभागी उपस्थित हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उन्होंने महारत हासिल कर रखी है हमारे पहले प्रतिभागी हैं प्रोफेसर उषा दुबे जो कि रविशंकर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र की प्राध्यापक रहे हैं और आजकल वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और तीन अलग अलग संस्थाओं से जुड़े भी हैं हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं सरोज मिश्रा जी जो कि मनोविज्ञान के प्राध्यापक हैं सिक्किम महाविद्यालय में हमारे तीसरे प्रतिभागी पेशे से वकील हैं वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है स्वार्थी दो शब्दों से बना स्व एवं अर्थ अगर हम इस तीन रूप में ले सकते हैं इसको एक तो हम स्व का मतलब तो मैं अपना लेकिन अर्थ के लिए तीन शब्दों का प्रयोग होता है तो एक तो अर्थ हित के रूप में कि स्वहित स्वहित की हम बात करें तो मनुष्य सदैव स्वहित के बारे में सोचता रहा है स्वयं के बारे में स्वयं के परिवार के बारे में स्वयं के समाज के बारे में स्वयं के मूल्य के बारे में स्वयं के राष्ट्र के बारे में तो स्वहित की बात हुई लेकिन दूसरा हमारा जो इसका जो अवधारणा है स्वार्थी की स्व का मतलब मैं हुआ अपना हुआ लेकिन अर्थ का यहाँ पर आ जाता है मतलब अगर हम इसी को स्वार्थी को है तो उर्दू में से बोलेंगे मतलब ही अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फिश तो ये दूसरी डिग्री, और तीसरा स्वार्थी का मतलब है कि स्व अर्थ की एक ये जो डिग्री है, पहले स्वार्थी वह व्यक्ति भी हो सकता है जो आप में केंद्रित हो, समाज से कटा हुआ है, बहुत ही अधिक व्यस्त है, लेकिन जो तीसरा है स्वार्थी का मतलब कि जो दूसरों के हितों की अनदेखी करते हुए या दूसरे के हितों पर कुठाराघात करते हुए, आघात करते हुए हमेशा स्वयं के स्वार्थ सिद्धि करता रहता है। तो हम इन तीन संदर्भों के साथ में इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर उषा दुबे से ये अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार रखें।
4: डॉक्टर यादव, आपने बहुत पते की बात कही। मैं कहना चाहूंगी कि स्वार्थ का मतलब है स्वार्थ, और ये बड़े बृहद शब्दों में आपने उसकी उसका विश्लेषण किया, परंतु अगर हम देखें तो स्वार्थ, आज का आदमी स्वार्थी क्यों हो रहा है? उसके स्थान पर यदि हम ये कहें कि क्या पहले व्यक्ति स्वार्थी नहीं था? यदि हम गांधारी माता को लें, जो कि एक उत्कृष्ट स्तर पर उसकी सभी प्रकार से वो बहुत प्रतिष्ठित महिला रही हैं, उनको भी जब लगा कि दुर्योधन को शक्ति प्रदान करना है, तो उनकी जो शक्ति थी उसको उन्होंने वज्र समान उनके शरीर को करने के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया। क्या ये स्वार्थ पड़ता नहीं? यदि आप देखें कि यदि हम ये कहें कि स्वार्थी को यदि हम नकारात्मक में लेते हैं तो वो स्वार्थी का दूसरा स्वरूप हो जाता है, यदि हम उसे सकारात्मक लेते हैं तो वो एक कल्याण भावना से जुड़ जाती है। किंतु आज जो व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है, उसका जहां तक मुझे समझ में आता है, वो ये आज की उत्तरोत्तर कड़ी प्रतिस्पर्धा, दिन के दिन मशीनीकरण का युग, आज व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं के लिए मानव मूल्यों को छोड़ रहा है। पहले जो हम जिन चीजों को, चाहे आप देखिए कि धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ मानव मूल्यों को समझता था, आज वहीं पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मशीनों का युग शुरू हो गया। तो इस तरीके से मेरा तो सीधे सीधे आज का विश्वास है कि जितनी तेजी के साथ आप आर्थिक विकास करेंगे, जितनी तेजी के साथ आप आर्थिक प्रगति करेंगे, और जितनी तेजी के साथ मशीनों का उपयोग होगा, उतनी तेजी के साथ मनुष्य से संबंधित मूल्यों का क्षरण होगा। आज व्यक्ति की प्रगति का सब कारण है कि वो अपनी प्रगति सोच रहा है, और वो भी प्रगति ऐसी जो कि भौतिकता के आधार पर हो। प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, प्रति व्यक्ति उपभोगगत वस्तुएं बढ़नी चाहिए। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है और आत्म केंद्रित हो रहा है, उसका कारण ये है कि वो अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, और यही उसका एक सबसे बड़ा, मेरी दृष्टि से एक बहुत बड़ा कारण है स्वार्थी होने का। क्योंकि आज हम उसके लिए नहीं सोचते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, सबसे पहले मेरी पूजा, मेरी पूरी पूर्ति हो जाए, उसके बाद फिर मैं दूसरों के लिए काम करूंगी या काम करूंगा, ऐसा अपनी मेरी अपनी धारणा है।
3: अभी मैडम उषा दुबे ने एक अर्थशास्त्री के रूप में भी कि मनुष्य आज का क्यों स्वार्थी हो रहा, आज का आदमी क्यों स्वार्थी हो रहा, उस पहलू को भी उन्हें रखा
2: जी।
3: लेकिन मैं समझता हूँ मनुष्य के बारे में मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं मैडम ईशा आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों आज का आदमी स्वार्थी हो रहा है।
2: जी यादव जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बिल्कुल सही कहा है कि स्वार्थ लाग सक करें ही सब प्रीति। ये हमारा पुराने समय से जो है स्वार्थ, हम मनुष्य जो है जुड़ते चले जा रहे हैं, और अधिकांश लोग आज की दुनिया में भी जो है वो स्वार्थ में रह रहे हैं। वे सबसे अधिक अपना ही फायदा सोचते हैं, सामने वाले का नुकसान कितना हो रहा है ये नहीं देखते, वो सोचते हैं मुझे ही पूरा फायदा मिल जाए, और उनकी एक साइकोलॉजी हो गई है, ये उनके मन का एक विज्ञान हो गया है कि यदि मेरे को फायदा होगा तो मैं शायद ज्यादा तरक्की करूंगा। उन्हें समाज की, अपने पड़ोस की, अपने राज्य की, अपने देश की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ वो अपना और सिर्फ अपना भला चाहते हैं। यदि हमारे सर्विस के क्षेत्र में भी, या हम जहाँ कार्यरत हैं, यदि हमारी किसी वजह से तनख्वाह नहीं निकलती है तो हमारे काम की गति धीमी हो जाती है, और ये भी हमारा साइकोलॉजिकल होता है कारण कि अरे हमें तनख्वाह तो नहीं मिल रही है तो हम क्यों काम करें, जब मिलेगी तब की तब देखी जाएगी। तो ये हमारा जो है वो मनोविज्ञान स्वार्थ से व्यक्ति लिप्त होता चला जा रहा है, बस वो अर्थ की सोचता है कि यदि अर्थ है तो हम काम करेंगे, अन्यथा हम काम नहीं करेंगे। यादव जी, आपने जो स्वार्थ स्वार्थी का तीन अर्थ दिया, स्वयं का अर्थ, स्वयं का मतलब। ये बिल्कुल सटीक है कि आज का जो मानव है वो बिल्कुल स्वार्थ पे ही निहित हो गया।
3: जहाँ साहब, आप तो पेशे से वकील हैं और खुद का अनुभव तो है ही, आपके जो क्लाइंट हैं वो अकेले, उनका अनुभव तो आप पूरे समाज की दृष्टि से ये बताए। और अभी तो संक्षिप्त चर्चा रहेगी क्योंकि अभी तो हमारे चर्चा का दूसरा चक्र भी चलेगा तब, और मुख्य विषय तो आप जानते हैं कि हमें कारण बताना कि स्वार्थी तो हो रहा है इसके बारे में। एक तो ये कि स्वार्थ जुड़ा हुआ है, हम अपने बारे में नहीं पहले सोचते बाद में दूसरा, लेकिन ये कि क्यों स्वार्थी हो रहा है इस पे भी विशेष रूप से आप प्रकाश डालेंगे।
5: देखो स्वार्थी क्यों हो रहा है, स्वार्थ तो हर जगह हर युग में रहा, चारों युग में स्वार्थ रहा। अभी जो स्वार्थी आदमी होते जा रहा है उसमें एक हमारे दृष्टिकोण से एक कानूनी जटिलताएं जो है वो भी बढ़ती जा रही है, इसलिए व्यक्ति स्वार्थी होते जा रहा है। क्योंकि कानूनी जटिलता से तात्पर्य एक रास्ते में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो आदमी बोलता है अरे कानूनी जटिलता पे क्यों जाए, कि वहां पर जाके अपना समय खराब करेंगे, अपना पैसा खराब करेंगे। इसके लिए वो जटिलताओं से बचने के लिए अपने आप स्वार्थी बन जाता है, क्योंकि कानूनी व्यवस्थाएं ऐसी हैं या कानूनी जटिलताएं हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ चुका है, पाश्चात्य अनुसरण हम कर रहे हैं और उन्नति और प्रगति हो रही है, आधुनिकतावाद आ रहा है। इस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि हम बच जाए, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, जो उनके पास रिसोर्सेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो अपने आप पर स्व में जा रहा है, जो आपका शुरू में ही था कि स्व में, तो वो स्व में जा रहा है।
2: एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि मनुष्य जो है उसकी आवश्यकताएं अधिक हो रही हैं और उस उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक स्वार्थ का जो है वो चादर ओढ़े हुए।
3: अभी हमने स्वार्थ की चर्चा की, मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कि हम आज स्वार्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अगर हम एक ऐतिहासिक क्रम में देखें समाज के, तो पहले शब्द स्वार्थी उपयोग नहीं होता, पहले लोग बोलते थे परमार्थी, मतलब दूसरे, तो परमार्थी होने का मतलब अगर हम परमात्मा के नजदीक जाना चाहते हैं तो परमार्थी बनना बहुत जरूरी है। अगर हम आज हमारे भौतिकवाद, आप ये मानेंगे भौतिकवाद के कारण जो स्वार्थी हो, लेकिन पहले जब अध्यात्म की बात चलती थी तो हम परलोक की बात करते थे कि हमारा परलोक सुधरे, हम सुख शांति परलोक में मिलेगी। तो परमात्मा, परमार्थी, तो परम शब्द, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि हमारे जो सोच है या जीवन के मूल्य है, जो आदर्श है, उसमें बदलाव आ रहा है कि हम परमार्थ की बजाय हम स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में क्या विचार है आप?
4: एक चीज जो मुझे कभी कभी बहुत साल थी अंदर से, वो ये है कि हमारी जितनी भी खोज, ये सब के सब खोज हमारी आवश्यकताओं के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि सबसे अधिक हमारे पास उपभोगगत वस्तुएं आई, स्वाभाविक है कि हमने जो आज पूजा पाठ आप देखिए उसका स्वरूप भी बदल गया। मंदिर में आप पहले कैसी पूजा होती थी, आज कैसी पूजा होती है। ईश्वर का जो आप परमार्थ की बात कर रहे हैं, परमार्थ और अध्यात्म, ये सारे जो जिसको कि जोड़ने वाला एक मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य है, दार्शनिक मूल्य है, इस मूल्यों के साथ जितना भी परिवर्तन आया है उसमें आप देखिए आज पूरा बाजारवाद की प्रक्रिया है, अध्यात्म भी बाजारवाद पर जुड़ा हुआ है। आप जितने साधु सन्यासी महात्मा ये सब देख रहे हैं, मैं नाम किसी योगी का नहीं लूंगी, परंतु ये सब के सब बाजारवाद से लेकर उपभोगवाद से लेकर है। जो जितना अधिक चंदा देगा, जो जितना अधिक चंदा उगाही करेगा उतना बड़ा आध्यात्मिक गुरु है,
2: तो अधिक सम्मान भी मिलेगा।
4: आज आपको सम्मान खरीदना पड़ रहा है। पहले गुरु, सबसे बड़ा गुरु मतलब गुरु, पहले माता पिता कहते थे पहले गुरु का कहना मानो, आज गुरु स्वयं गुरुडम में फंस गया है। आज गुरु स्वयं पहले कहता है कि मुझे अधिक सदी का वेतन दीजिए, और आज सबसे अधिक वेतन है गुरुओं के पास, उसके बावजूद भी जो उसके मूल्य है उसका क्षरण हो रहा है। सीधी सी बात है कि आप एक हाथ में मूल्य ले लीजिए और दूसरे हाथ में भौतिक संपदा ले लीजिए, आप दो नाव में एक साथ पैर नहीं रख सकते। यदि आपको नैतिक मूल्य लेना है तो आपको स्वाभाविक है कि भौतिक मूल्यों का त्याग करना होगा। यदि आप भौतिक मूल्य लेते हैं तो फिर आप स्वाभाविक है कि नैतिक मूल्य आपसे छूट जाते हैं।
2: यादव जी ने बहुत अच्छा कहा कि परमार्थी, परम शब्द हम जो जिसका उपयोग करते थे आज से 60 साल पहले, और हमारी मानसिकता भी वही होती थी, पर

0: हम स्वार्थी शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि स्वार्थ ही व्यक्ति की जो है वो सबसे बड़ी कमजोरी है। वो अपनी कमजोरी को जो है वो प्रदर्शित करता है स्वार्थ को सामने रख के।
1: और भव्यता ही आज अध्यात्म का दूसरा स्वरूप हो गया जी। उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा।
0: बिल्कुल सही।
1: सादगी से एक शांति मिलती थी। व्यक्ति पूजा पाठ क्यों करता है उसको आत्मिक शांति मिलती। आज आप किसी के घर जाते हैं कब जाते हैं जब उसके यहाँ कोई भव्य आयोजन होता है। पहले हम शिष्टाचार में जाते थे, लोगों की तबीयत देखने जाते थे, लोगों के सुख दुख में शरीक होने जाते थे। उनके घर बहुत दिन से नहीं मिले हैं, चलिए भाई क्या बात है, बहुत दिन से आए नहीं, घर में सब हालचाल तो ठीक है। आज हम कितने बार किसके यहाँ बिना काम के जाते हैं। यदि हम चले जाए तो हम पहले अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, फोन करके जाते हैं। यदि आप अचानक पहुंच गए तो लोग आपसे कहते हैं अरे साहब आपने फोन नहीं किया, आप बताइए क्या हम इतने केंद्रित हो गए, क्या ये स्वार्थ करता नहीं।
0: बिल्कुल सही कह रही मैडम।
2: मैडम उषा दुबे ने बिल्कुल सही कहा। बाजारवाद में एक प्रदर्शन का पहलू था, हम हर चीज दिखावा करना चाहते हैं और आपने केंद्रित हो चुके हैं। ये जो घपला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब आवश्यकता से अधिक हम स्वार्थी हो गए कि हम सार्वजनिक धन दूसरों के धन उसके हमें कहीं भी परवाह नहीं। तो मैं झा साहब आपसे इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है और कहां तक जा रहा है।
3: आज के भौतिकतावाद में तो जैसा कहा जा रहा है कि रिश्ते होते ही किसी के जैसे कि जहाँ सिक्का डालो तो बात होती है। तो यानी हम स्वार्थ जो है हर तरीके का तोल रहे हैं, तोल मोल हो रहा है। मैंने कहा कि जटिलताएं आ गई हैं तो स्वार्थ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए व्यक्ति हर चरम पर जा रहा है, हर चरम को वो चाहता है क्योंकि उसकी अपनी आवश्यकताएं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से वो व्यक्ति जो है भूख बढ़ गई है, सामाजिक आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, हर चीज को पाने की इच्छा ज्यादा बढ़ गई है। पहले नीतिगत बातें हुआ करती थी, जैसे कहा करते थे कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। इसी बात पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, वो भारतवर्ष के काल पतन का कारण हुआ और यही कारण है कि आगे हम काल पतन की ओर चले जाएंगे। अगर सब स्वार्थी होते जाएंगे तो काल पतन एक दिन निश्चित होगा।
2: इस बारे में तुम सभी सहमत है कि ये जो भौतिकवाद है, बाजारवाद है, दिखावे की बात है, आत्म केंद्रित होने की बात है, लेकिन इससे हमारे समाज का पतन हो रहा है, समाज के मूल्य हो रहे हैं, समाज में बिखराव आ रहा है। और चाहे परिवार का बिखराव हो, समाज का बिखराव, वो आगे चल के राष्ट्र के बिखराव। जब आप देखते कि प्रांतवाद, हमारी भाषा सबसे श्रेष्ठ है, हमारे प्रांत सबसे श्रेष्ठ है, बाकी लोग हीन है, तो ये आप देखें, ये जो स्वार्थ जो हम निजी स्तर पर रहते धीरे धीरे उसका हम जो फैलाव समाज के बिखराव के, हमारे समाज श्रेष्ठ है, हमारी बोली श्रेष्ठ है, हमारा ही प्रांत श्रेष्ठ है, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ये काफी घातक सिद्ध होने वाला। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे भी थोड़े अपने विचार।
0: यादव जी, ये जो आपने कहा कि प्रांतों की, ये तो हमारी दूरियां बहुत बढ़ा रहा है। ये जो कि हमारी बोली, हमारा राज,

0: सोचता है कि सामने वाला मुझे प्रांत के भाव में तो बात नहीं करेगा, और हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा जो लक्ष्य है, ये सभी जो है हम अपनी जरूरतें, अपने सपने, ये सब पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितना भी नीचे स्तर में गिरना पड़े, हम अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चले जाते हैं।
1: तो यादव, मेरे को थोड़ा सा भी लगता है कि ये जो आजकल ये बिखराव जो आ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा परिवार में बिगड़ना। पहले आप देखिए, संयुक्त परिवार होता था, सब भाई वो एक साझा चूल्हा होता था, सब मिल बांट के खाते थे। मैंने यहाँ तक, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं देखा करती थी कि मान लीजिए एक भाई का शर्ट है यदि फ्रेश नहीं है तो दूसरे भाई का शर्ट पहन के चला जाता था, सबके कपड़े साझे हुआ करते थे। तो वो जो साझापन था, वो पारिवारिक विघटन संयुक्त परिवार से अब एकाकी परिवार की ओर आने लगा। आज आप अपना खुद का देख रहे हैं, तो ये जो परिवार में विघटन हुआ, उस पूरे परिवार के विघटन का आप देखिए कुछ का असर दाम्पत्य जीवन में लोगों का पड़ रहा है। शादी हो के लड़की गई नहीं कि उस सीधे चूल्हा उसका अलग होना है, और पति पत्नी का आपस में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, आपस में ही प्रतिस्पर्धा है, एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कारण महत्वाकांक्षाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो ये जो आपस का जो सामंजस्य था वो सिर गया, क्योंकि देखिए रिश्ते निभाने के लिए तीन चीजें आवश्यक है, एक तो प्यार, दूसरा विश्वास और तीसरा आत्मसंतुष्टि। और ये तीनों आजकल आपको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ पर, अपनी प्रगति पे, स्व महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, यदि मेरा पति आगे बढ़े तो आपके ही करियर क्यों आगे बढ़े, मेरा क्यों नहीं बढ़े। माँ का जो घर है यहाँ का पालन था, वो आजकल गाँव हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों को सब सुबह 8 बजे से लेकर जब बच्चे जा रहे हैं तो शाम को 6 बजे जा रहे हैं, 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं तो सीधे स्कूल में चला गया। तो कुल मिला के जो आप अपनी इतनी जल्दी जो बच्चा अलग हो रहा है, उस सबका बहुत धीरे धीरे उसकी मानसिकता पर असर पड़ रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि परिवार में जिस मूल्यों को लेकर हम पहले जीते थे कि जिन माता पिता की सेवा की वो कोई तीर्थ धाम गयो न गयो, वो बात अब तो बाबा आदम जमाने की हो गई। अब हमारे को प्यार नहीं रहा, तो पारिवारिक प्यार का विघटन, परिवार का विघटन आज के स्वार्थपरता में आहुति का काम कर रहा है, उसको आपको पूरी सीधे सीधे हरा दे रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है।

0: बढ़ता जा रहा है।
1: मैं समझता हूँ कि एक कारण और भी है, ये कि जो महानगर विकसित हो रहे हैं
0: जी
1: और नौकरी के धंधे की तलाश में जब दूर जाते हैं,
0: जी
1: तो जैसे बंबई का

दूसरे से दुश्मन कि एक तो प्यार आ जाए और राय के बाद ऐसे कोई निर्णय ले कि जिससे समाज का विघटन हो। तो एक तो ये कि दो चीजें हैं, एक तो संघ के बारे में सोचना, संघ के कैरियर के बारे में सोचना, संघ के लाभ के बारे में सोचना, एक तो स्वाभाविक है, मनुष्य की स्वाभाविक सोच है।

जो संसाधन हैं उस पर निर्भर करता है। ये जो हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन वन संपदा है, हमारे जो दूसरे खनिज संपदा है, ये जो हमारे जमीन के अंदर की जो संपदा है और जमीन के ऊपर की जो संपदा है, पहले वो उससे प्यार करते थे। पहले एक एक वनवासी उन वनों की रक्षा करता था। आज हुआ क्या है कि विकास के नाम से हम सबसे पहले पर्यावरण को हम पूरी

0: स्वाभाविक है जब हम पेड़ की पहले पेड़ के साथ आपको ख्याल है चिपको आंदोलन था जब वहां पर शुरू किया तो लोग चिपक गए हम झाड़ नहीं काटने देंगे। आज आप पूरे वन को तेजी के साथ काटेंगे उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। ये विकास का जो विकास से संबंधित हम जितने भी संसाधनों का जो नाश कर रहे हैं उसका ये साइड इफेक्ट क्या होने वाला है आप देख रहे हैं कि उसके कारण पूरी धरती कांप रही है धरती पूरी गर्म हो रही है। हमारे पास न केवल प्रदूषण है आज स्थिति है कि हम कितनी बीमारियों को आत्मसात कर रहे हैं कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं ये सब क्या है इसीलिए ना कि स्वार्थ का ही तो देन है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीना सीख लें यदि हम ये सतत विकास की धारणा को सामने में रख लें और यदि हम ये मानव विकास को अधिक से अधिक मनुष्यों का विकास हम करें उनके जो गुण है उसको हम आगे बढ़ाएं यदि हम इस तरीके से करें तो स्वाभाविक है कि स्वार्थपरता थोड़ी तो कम होगी।
1: आपने बिल्कुल सही कहा मैडम कि हम अल्पकालिक लाभ के लिए जो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे बात करते हैं कि विकास टिकाऊ होना चाहिए विकास
0: जी
1: आधारित
0: सर
1: होना चाहिए
0: जी सर
1: तो हम दीर्घकालीन विकास की बात नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम पर्यावरण

0: से, यही जो दुनिया आजकल की ऐसे दिखावे की हो रही है कि महंगे से महंगे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, महंगे से महंगाई लग्जरी गाड़ी का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो लोग सोचते हैं बड़ा अमीर आदमी है, चाहे हम उसको लोन लेके कर रहे हैं, पर ये स्वार्थ जो है वो बड़ा
1: विषय आपने बिल्कुल सही कहा। ये विषय इतना महत्वपूर्ण था कि इस पर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: हमारे पास समय की सीमा है, समय की सीमा है, इसलिए
2: सफलता का मानदंड हो गया।
3: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, आज का आदमी क्यों हो रहा है स्वार्थी। प्रतिभागी थे प्रोफेसर उषा दुबे, श्रीमती सरोज मिश्रा और श्री अनुराग झा। संचालन कर रहे थे डॉक्टर हनुमंत यादव। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे लीजिए सुनिए वार्ता अपने आसमां की तलाश में। वार्ताकार हैं श्रीमती सजला परमार।
4: न आ गए फिर बरसाती बूंदों के दिन, गंद भीगे बाग के वन के खेत के दिन, लौट कर आए पखेरों की तरह ये, खिलखिलाती पत्तियों पर चमकती बूंदों के दिन, असह्य तपती गर्मी के बाद बारिश की बूंदे, भीगा भीगा ये मौसम मन को सराबोर कर देता है, ताजगी से भर देता है। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सामान्य बात है, तो असामान्य क्या है? उसका खुद को एक होल शेल में समेट लेना, फिर बाहर की दुनिया, प्रकृति, लोग, चीजें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित या कहें दिल से खुश नहीं करते। वो कौन? वो हमारे आपके परिवार की धुरी, वो अहम हिस्सा जिसके बिना एक भी दिन व्यवस्थित रूप से निकालना तो दूर, हम उसके बिना जीने की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। हर परिवार में पत्नी या माँ अपना वो किरदार अदा करती है, उसके लिए वो प्रशंसा की पात्र है। एक परिवार में एक महिला जब शादी के बाद आती है, मायके के बाद इस दूसरे घर को अपना सब कुछ मानकर तन मन समर्पित करके हर एक की पूरे मन से देखभाल करती है, ये देखकर एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है कि कितनी ही तरह की जिम्मेदारियां निभाते हुए वो सुबह से शाम खुद को भुलाकर अपना कर

बच्चे अपनी माँ या पत्नी का वैचारिक सपोर्ट करें, बल्कि उसके पैशन या शौक को आगे लेकर जाए। यही हमारी कई बार घर परिवार की जरूरतों के चलते अपने पैशन या शौक से तो दूरी बना लेती है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तो अपनी क्षमता से भी परे जाकर बाहरी दुनिया में न सिर्फ कदम रखती है बल्कि जबरदस्त शारीरिक श्रम वाले कार्यों को अंजाम भी देती है। पता नहीं नाजुक सी छुईमुई सी दिखने वाली घर की सीमा के भीतर ही रहने वाली उस स्त्री में इतना साहस गजब का हौसला कहाँ से आ जाता है। हमें अपने आसपास ऐसी कितनी ही मिसालें मिल जाएंगी, पर ये बात जरूरत की हो गई। अक्सर देखा गया है कि माता पिता दोनों ही अपने शौक या पैशन को पूरा न करने पाने के कारण अपनी आकांक्षा बच्चों पर थोपते हैं। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हर एक इंसान में कुछ खास शौक होते हैं जिसको करने से बेहद खुशी और अपार संतुष्टि मिलती है, और यही अगर दबा रह जाए तो चिड़चिड़ाहट गाहे बगाहे निकलती रहती है। कछुए की तरह अपने खोल में रहना कितना आसान और सुरक्षित है ना? इसी को नियति मानकर अमूमन ज्यादातर स्त्रियां रोज रोज वो ही करती रहती हैं जो बाकी सब करती हैं। कौन घर की दहलीज के पार जाकर संघर्षों चुनौतियों रिजेक्शन का सामना करे? यही तो सही है, बढ़िया है। खाना बनाना, बच्चों की परवरिश, परिवार के सदस्यों की देखभाल, घर की व्यवस्था, नया कुछ करना नहीं है। लेकिन बहुत सारी गतिविधियां, लेखन, पेंटिंग, टीचिंग, सिंगिंग, मेहंदी सिखाना, ये तो घर परिवार में रहकर ही की जा सकती हैं। और हर एक को लाइम लाइट भी नहीं चाहिए होता है, पर अपने पैशन अपनी पसंद के काम के लिए 24 घंटे में से कुछ समय देना कितना सुकून दे सकता है, ये तो जब होगा तभी इसकी अनुभूति हो पाएगी। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, अपने उस हुनर पैशन से इनकम भी क्रिएट की जा सकती है, और जब अच्छी आय आना शुरू होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। वर्तमान में मायके या ससुराल के सदस्यों का काफी सहयोगात्मक रवैया देखा गया है, और उनके उत्साहवर्धन एवं सपोर्ट के चलते अपना आसमान तलाशना एक नारी के लिए काफी आसान हो जाता है। हमें से हर एक का अपना आसमान होता है और वो हमारी पहुंच से कितना दूर है ये जानने में ही कई बार काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, और फिर उस विलंब की कोई न कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है। और अगर ये अंतराल बहुत अधिक लंबा है तो चीजें इतनी ज्यादा बदल चुकी होती हैं कि ऐसा समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाए, या कभी कभी संघर्ष बेहद लंबा और थका देने वाला होता है कि मन कहता है पहले की ही जीवनचर्या ठीक थी। क्योंकि अगर ऐसा कोई शौक है जिसे बाहरी दुनिया में जाकर पूरा करना पड़े तो कभी उम्र, कभी सूरत या टेक्नोलॉजी की दुहाई देकर उसे नकार दिया जाता है। कई सैकड़ों जन्मों के बाद ये अनमोल मानव जन्म हमें मिला है। नॉर्मल रूटीन के काम करके ही इसे जाया न किया जाए। कुछ तो समाज या देश के लिए सार्थक रचनात्मक करने की कोशिश होनी चाहिए, पर ये तभी संभव है जब एक नारी स्वयं के जीवन में अपनी पसंद का कोई काम या एक्टिविटी करे। क्योंकि एक संतुष्ट और प्रसन्न व्यक्ति ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जैसे यदि एक स्त्री की शिक्षा में पढ़ने पढ़ाने में रुचि है तो वो इससे

0: तो कर ही सकती है विद्यालय में शिक्षिका बनकर या घर पर ही ट्यूशन लेकर। और कुछ ऐसे बच्चों के भी जीवन में ज्ञान की रोशनी ला सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी फीस ना लेकर। तो काम तो एक है शिक्षा देना, पर उससे किसी को संतुष्टि और खुशी के साथ साथ सम्मान और आर्थिक दृढ़ता तो मिल ही रही है और कुछ को ज्ञान के साथ साथ आर्थिक मदद भी हो रही है। ये तो मात्र एक उदाहरण है, हुनर कोई भी हो उससे सीखने सिखाने वाले दोनों का फायदा ही होता है। अपने आसमान की तलाश करते हुए हमें अपने रिश्तों को इग्नोर नहीं करना है, या बहुत सक्सेस मिल जाए तब भी खुद को विशेष या स्पेशल नहीं समझना है, क्योंकि घर परिवार में सब बराबर होते हैं। आपसी समझ और एक दूसरे की मदद से ही मंजिल हासिल होती है और ये बात परिवार के हर एक सदस्य पर लागू होती है। परिवार में जो भी अपना रोल या जिम्मेदारी है उसे निभाते हुए अपने हुनर को भी समय देना ये बेहद जरूरी है। एक नारी अपने परिवार की बहुत प्यार और जतन से देखभाल इसलिए नहीं करती कि उसे तारीफ सम्मान या महत्व चाहिए होता है, पर प्रशंसा मन को एक संतुष्टि तो देती ही है कि वो कुछ अच्छा और सही कर रही है और ये उसके आत्मबल को बढ़ाता है। और एक आत्मविश्वास से भरपूर महिला अपने जीवन में आए कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता रखती है। घर हो या बाहर, बेहतर तरीके से काम करने के लिए अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम, वॉकिंग, ये शरीर को चुस्त दुरुस्त तो रखते ही हैं, हमारी काम करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक संतुलित भोजन, सही नींद, पानी की मात्रा, ये सभी मायने रखते हैं। आने से कम अपेक्षाएं रखना और खुद की अपेक्षा न करना उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। खुद को जरा सा रेस्पेक्ट देना, अपने स्वास्थ्य को महत्व देना, अपने लिए कुछ समय निकालना और अपनी पसंद का कोई काम करना, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, तो अपराध बोध तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर खुद की योग्यता पे यकीन हो तो देर से ही सही मंजिल मिलती जरूर है। उसका ये प्रयास अनेक महिलाओं को प्रेरित कर सकता है जिनके जीवन में कुछ अनचिन्हा, अनगुथा, अनकहा रह गया हो। अपने आसमान की तलाश के लिए शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता अपने आसमां की तलाश में। वार्ताकार थी श्रीमती सजला परमार। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मात्स्यिकी, कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

आपको याद दिलाती, रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। नीचे सुनिए चित्रपट संगीत।

नटी और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सीमा का गीत। गीत शैलेंद्र का था और संगीत था शंकर जयकिशन का।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने है, खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लीजिए अब सुनिए फिल्म काला बाजार का गीत, आवाजें गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की, गीत शैलेंद्र का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

श्री घोषाल और कुणाल गांजावाला की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म साया का गीत, गीत सईद कादरी का था और संगीत था अनु मलिक का।

मुझे भी कुछ कहना है। श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर

ही आपने सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत था पंडित नरेंद्र शर्मा का, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपने सुना फिल्म दो आंखें बारह हाथ का गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत था भरत व्यास का और संगीत था वसंत देसाई का। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं, पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पुष्पा हंस, इनके स्वर में पहले सुनिए नक्श लायलपुरी की ये रचना।

0: कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: मिता,
0: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
0: कहाँ
2: एडमिशन कराने? आता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पुष्पा हंस के स्वर में लीजिए अब सुनिए इशरत किरतपुरी की ये रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थी पुष्पा हंस। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ। और प्रदेश में आज से वर्षा की गतिविधि में फिर से हो सकती है वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल तथा वित्तीय कार्यों के साथ ही 8 से अधिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा और विचार किया जाएगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सरगुजा जिले में संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 11 से 18 जुलाई तक जिले में परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और छोटे परिवार के महत्व का संदेश देगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीएस मार्को ने बताया कि पखवाड़े के दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थानों में परिवार नियोजन संबंधी निःशुल्क परामर्श और सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कवर्धा जिले में आयोजित कृषक संगोष्ठी और प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना से जुड़े 4691 गन्ना उत्पादक किसानों को नवीन अंशधारी सदस्य के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि यह पहल किसानों को सहकारिता की मजबूत भागीदारी से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने और क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के 84 युवाओं को देश की प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC में निशुल्क व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दंतेवाड़ा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, जिला रोजगार विभाग और माई भारत संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को हर महीने 9,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। राजधानी रायपुर के कमिश्नरेट पुलिस ने 29 लाख कीमत का 46 किलो से अधिक गांजा पकड़ा है। इस कार्रवाई में एक दंपत्ति सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा थाना में मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह गांजा ओडिशा के कालाहांडी से लाया गया था। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधि में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ। और प्रदेश में आज से वर्षा की गतिविधि में फिर से हो सकती है वृद्धि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दस बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर बजाया राग तोड़ी में आलाप जोड़ झाला के बाद विलंबित गत जो रूपक ताल में और द्रुत गत जो तीन ताल में निपत है। आपके साथ तबले पर संगतकार हैं निजामुद्दीन खां।

सितार पर बजाया, राग तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगतकार थे निजामुद्दीन खां। ये आकाशवाणी का रायपुर और सराय पाली केंद्र है।

आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म अपनापन का गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए सुनिए फिल्म संबंध का गीत, आवाज़ मुकेश की, गीत प्रदीप का, संगीत ओपी नैयर का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए प्यारे तो पराए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादें
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनके पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए

जी, आप सुनिए मुकेश की आवाज़ में फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दोस्ती का गीत। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापर्टी, विषय वस्तु विशेषज्ञ मात्स्यिकी, कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में फिल्म धर्म करम का गीत, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत था राहुल देवबर्मन का। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 तथा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का माँ मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधे स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे

आज विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हान्यू और क्रिस्टिना म्लाडेनोविच ने जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए निर्गुणी भजन।

सुन रहे हैं गोदू राम वर्मा और साथियों के स्वर में भजन।

0: chicken. And it was a YouTuber. YouTuber subscriber Harari Chicken. Akashwani Raipur. Or Sunye. Akashwani Raipur ke Chicken Do Karakam. Harari Chicken subscriber Karakam ko like kare, share kare. Or apne vichar bhi saajha kare. To YouTube पर उपलब्ध है चरणबद्ध कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना न भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

0: अभी आप सुन रहे थे निर्गुणे भजन। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, सदन में प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को दी गई श्रद्धांजलि। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। और प्रदेश में आज से एक बार फिर बढ़ सकती है वर्षा की गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज सदन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जानी मानी पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने स्वर्गीय तीजनबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कला के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 और अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग विनियम 2026 पटल पर रखेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विकसित भारत, रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबीजी रामजी योजना छत्तीसगढ़ को पटल पर रखेंगे। वहीं वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क का वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 पटल पर रखेंगे। इसके साथ फरवरी मार्च 2026 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाएगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में जहां उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा, नियमित रूप से जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होंगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। कवर्धा जिले में आयोजित कृषक संगोष्ठी और प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना से जुड़े 4,691 गन्ना उत्पादक किसानों को नवीन अंशधारी सदस्य के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि यह पहल किसानों को सहकारिता की मजबूत भागीदारी से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने और क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधि में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने 29 लाख कीमत का 46 किलो से अधिक का गांजा पकड़ा है। इस कार्रवाई में एक दंपति सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा थाना में मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह गांजा ओडिशा के कालाहांडी से लाया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, सदन में प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को दी गई श्रद्धांजलि। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। और प्रदेश में आज से एक बार फिर बढ़ सकती है वर्षा की गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम

0: नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
1: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
1: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: अब आगे लिखते हैं प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिरिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है, यह सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का, वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता है, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इससे पेड़ों की

0: लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अशोता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
3: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
3: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
2: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।

0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
1: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, तो और काट, जब से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
2: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
1: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेनी इस गर्मी में।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
4: ऊपर ले जाना होगा
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़े। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
1: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी तुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहु और हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
0: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी।

गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं। मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी आग।

0: कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
1: छत्ते? क्या मतलब?
0: हाँ हाँ, छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े, सात

0: कैसा था वहां का दैनिक जीवन? जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गई। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है।
1: अरे, लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
2: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।
1: वो देख गौरा।
2: अरे हाँ,
1: वो साल के बड़े पेड़ के पास।
2: हाँ, वही।
1: न जाने कौन लोग हैं।
2: पता नहीं कौन लोग हैं।
1: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
2: चलो
3: खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथ में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
1: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए।
3: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
1: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
2: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है?
1: और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकनी है।
1: मगर इस समय इनके
4: लोगों को भी बुला लाते हैं।
5: हमें भी चलना चाहिए।
4: मगर आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार वो रास्ता छोटा लगेगा।
6: परा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन
0: उनका बुरा हाल हो गया। पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए।
6: अगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक

0: भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: हाँ, ठीक है, ठीक है। मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
3: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बचाएंगी। हाँ,
2: हाँ, नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ, क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
3: बिल्कुल
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
4: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
2: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो।
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
5: चिब्बू भाग ले यहां से,
6: भाग ले, बाद में मांगने काटने के।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
7: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी ऐसी चिपकी पेड़ से किसी ने छोड़ा ही नहीं पेड़ को। अरे वाह, क्या बात
6: भाई,
7: गौरा वाह, बहुत
6: कमाल कर दिया।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
8: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को
8: कुसुमलता,
9: जगबंधु,
8: चेतना
9: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।

दोपहर के 12:30 हुए हैं। लोकरंजनी कार्यक्रम में अब सुनती हैं कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार हैं द्वारिका यादव और साथी। पहले इनसे सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शाम को 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार थे द्वारिका यादव और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में 2 नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फूक क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा है गीत। संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का और फिल्म का नाम था सुबह। लीजिए अब सुनते हैं मन्ना डे के स्वर में शैलेंद्र का लिखा गीत। तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है सीमा।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:30 पर और पब्लिक स्पीक रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित डी के दातार का वायलिन वादन।

हमर हाथी हमर गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5 बजे। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 8:15 पर।

सुगम संगीत आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। कलाकार होंगे ललित शर्मा, चंदना सेन और साथी। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे पुष्पा हंस। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसमें आज आप सुनेंगे क्रम आजकल, विषय होगा वर्तमान में जीना सीखे, साथ ही होगा क्रम दृष्टिकोण।

चौपाल कार्यक्रम सुनिएगा रोजाना की ही तरह शाम 7:21 पर, जिसमें सुनेंगे क्रम आज की बात। विषय होगा जुन्ना तालाब के रखरखाव और संरक्षण। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का फसलों पर उपयोग, विधि और लाभ विषय पर आज की सलाह देंगे श्री राजेश कुमार गोले, उप महाप्रबंधक विपणन।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी दोपहर 1:30 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम बिंदिया, जिसमें सुनेंगे क्रम आज की बात, अपना वक्त दूसरों को भी दे इस विषय पर। साथ ही सुनेंगे दीदी की सलाह फायदेमंद और गुणकारी जामुन पर।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम बिंदिया।

ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता ले, जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं हूँ आपकी सखी प्रीतम कौर, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बहनों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगी। बहनों, आपका और हमारा रिश्ता रेडियो के माध्यम से बहुत गहरा और अटूट बना हुआ है और हम चाहेंगे यह और भी गहरा होता जाए। बहनों, रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए रिश्तों को अपना वक्त अपना समय भी देना होता है, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। जब आप दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं तो उन्हें आपकी परवाह, आपके स्नेह और सम्मान का एहसास होता है। किसी के साथ बिताए गए वक्त की लंबाई से ज़्यादा उसकी गुणवत्ता मायने रखती है, यानी कि क्वालिटी टाइम। जब आप किसी के साथ समय बिता रहे हों तो मोबाइल दूर रखकर उनकी बातें सुने और पूरा ध्यान उन पर केंद्रित करें। आप देखिएगा, उन्हें अच्छा फील होगा। जब कोई मुश्किल में हो तो उन्हें समय देना सबसे बड़ी सहायता होती है। ऐसे समय में उनके दुख को सुनना और सांत्वना देना मानसिक मजबूती देता है। आपका साथ, आपका वक्त उनके लिए ताकत बन जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि दूसरों की बातों को धैर्य से सुनने और समझने से आपसी विश्वास गहरा होता है। अपने परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय बहनों जरूर बिताएं। आपसी प्यार आपको मजबूत बनाएगा और आपके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी अकेलापन फील नहीं करेगा। सप्ताह में कम से कम एक बार अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदार और ज़रूरतमंदों के लिए अपना थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाल कर दें। उनकी मदद करें, उनकी सुनें, खुश रहें और आप भी खुश रहें। या मैं एक बात और कहना चाहेंगे कि दूसरों को समय देना अच्छा है, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को नज़रअंदाज ना करें। एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है ताकि आप भी मानसिक रूप से ऊर्जावान बने रहें। तो बहनों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहनों, खुद का ख्याल रखने के लिए मन की शांति बेहद ज़रूरी है। शांति और सुकून के लिए ईश्वर के चरणों में समय बिताना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ईश्वर से हमारा आत्मिक रिश्ता जुड़ा होता है। तो आइए ईश्वर के चरणों में चढ़ते हैं और सुनते हैं ये भजन गोपी फिल्म का। भजनकार है राजेंद्र कृष्ण और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और भजन गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

जीवन के दुखों के कारण जब हम टूटने लगते हैं तो हमें किसी आत्मिक ताकत शक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें संभालने में मदद करे। ऐसे में यह समय होता है ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करना, अपने दिल की बात उनसे करना, अपना दुख उसके चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाना। तो आइए प्रार्थना में लीन होने के लिए सुनते हैं यह बेहद खूबसूरत प्रार्थना गीत फिल्म अंकुश से, जिसमें स्वर दिया है सुषमा श्रेष्ठ ने और प्रार्थना गीत लिखा है अभिलाष ने, संगीतबद्ध किया है कुलदीप ने।

ईश्वर कई रूपों में हमारे साथ होता है। हम जिस रूप में उसे पुकारे वह हमें बुद्धि, ज्ञान और मदद और सांत्वना प्रदान करता है। किस राह में हमें चलना है वह हमारी अगुवाई करता है। सद्बुद्धि और ज्ञान देने वाले ईश्वर की हम सदैव आराधना करते हैं और आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, और यह विश्वास हमें जीने की ताकत देता है। हम दोनों इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के गीत को संगीतबद्ध किया है जयदेव ने।

ईश्वर ने प्रकृति के रूप में हमारे लिए बहुत से सुख और साधन दिए हैं। यह वो उपहार है जो ईश्वर ने सृष्टि बनाते हुए हम इंसानों को दी है। ईश्वर के चरणों में शरण लेने से तपती गर्मी में तरोवर की छाया के समान सुख मिलता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर के चरणों में शरण लेने से वह हमारे लिए रास्ते ज़रूर निकालते हैं। बस आप उन पर भरोसा रखें। फिल्म परिणय का गीत सुनते हैं शर्मा बंधु जी की आवाज़ में। गीत लिखा है पंडित रामानंद शर्मा ने और संगीतबद्ध किया है जयदेव ने।

बहनों, आज हम बातें करेंगे जामुन के फ़ायदे और गुणकारी के बारे में, क्योंकि जामुन जो है काफ़ी गुणकारी होता है। जामुन का फल, गुठली और लकड़ी, यानी कि पूरा का पूरा जामुन का वृक्ष अमृत के समान है। यह मधुमेह यानी कि शुगर के लेवल को नियंत्रित करने, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बेहद फ़ायदेमंद है। जामुन खाने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है गुठली को फेंक देते हैं, लेकिन इसके गुठली के बहुत से फ़ायदे को नहीं जानते। जामुन के गुठली का पाउडर कई बीमारियों से लड़ने में मददगार होता है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि जामुन की गुठली से पाउडर कैसे बनाया जाता है। जामुन की गुठली को हम जब देखते हैं कि जब जामुन खाया जाता है तो गुठली को हम अच्छे से यदि इसे तोड़ेंगे तो उसके अंदर हरे रंग का बीज होता है। तो बहनों, उस बीज को निकाल लीजिए और उसके बाद उसे धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। फिर सूखे हुए बीज को पीसकर उसका बारीक पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को यदि सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि मधुमेह की जो बीमारी है काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाएगी। और जामुन खाने के बाद रक्त का संचार भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और खून में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो बहनों, जामुन का जो हम देखते हैं कि जामुन के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी जो नरम होते हैं, यदि उसे उबाल कर भी पियेंगे तो खांसी सर्दी की बीमारियाँ भी दूर होती है। तो बहनों, आपको जब भी वृक्ष लगाना होगा तो जामुन का वृक्ष अपने आंगन पे ज़रूर लगाइए। और चलते हुए आइए सुनते हैं काजल फिल्म का यह गीत। आशा भोसले की मधुर आवाज़ में गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

0: और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अपनी सखी प्रीतम कौर को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिंदिया, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: पवित्र पापी, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत और संगीत था प्रेम धवन का।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

सत्यम शिवम सुंदरम। लीजिए सुनते इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। बोल लिखे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु

0: में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को SI का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्ध पोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री

0: सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
2: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
3: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल

0: @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुनी साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। संगीत था रवि का और फिल्म का नाम था आंखें।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

का और फिल्म का नाम था जूली। लीजिए अब सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म का ये भक्ति गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत है नौशाद का।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हूँ, फिर पढ़ के भुला जाते हूँ।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एखर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

गौहर कानपुरी की लिखी अभी रचना आपने सुनी, संगीत था उषा खन्ना का, स्वर सुमन कल्याणपुर का और फिल्म का नाम था दादा। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में भरत व्यास की रचना, संगीत है वसंत देसाई का और फिल्म का नाम है दो आंखें बारह हाथ।

लता मंगेशकर के स्वर में लीजिए अब सुनते हैं शागिर्द फिल्म का ये गीत। बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय

0: ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया में न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रांची जिले के खलारी जिले के पिपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इस अभियान को क्षेत्र में संगठित कोयला खनन और तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। विकेटकीपर और बल्लेबाज यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Supreme Court today ruled that the process of determining citizenship or declaring an individual a foreigner must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. The Apex Court was hearing a batch of petitions filed by 27 people who had been declared foreigners by the Foreigners Tribunals in Assam. The Supreme Court set aside the judgments of the Guwahati High Court that had upheld declarations of 27 appellants as foreigners. A bench of Justice Vikramnath and Justice

सोमवार की दोपहर आकाशवाणी एफएम गोल्ड फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आपके साथ है हम रूमी मलिक और हमारे साथ है हमारे ढेर सारे श्रोता और उनकी फरमाइश पर सबसे पहले ये गीत

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। और हमारे कार्यक्रम में जैसे कि अटेंडेंस लगती है, कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं? अहमद फूलवाले, बोधराज कोरवाल, संदीप मक्कड़, कमलकांत गुप्ता, तुलसी मस्कीन, धर्मेंद्र चीपा, विजय सुरालकर, राधेश्याम देवांगन, प्रकाश वर्मा, जय हमारे साथ में है, सतीश अनेजा जी आ गए, राम नरेश चिक जी, अनिल कुमार गवहंकर, राशिद हुसैन अंसारी, मोहम्मद इरशाद, प्रताप वर्मा, प्रियंका खंडारे, डरना मत अगर कोई नाम छूट जाए ना, इस गीत के उस पार भी लेंगे, जॉन डिकास्ट्रो गाजियाबाद से, राशिद हुसैन, अशोक डाले, अनिल मोहन, परमिंदर सिंह जी। और अगला गीत हम प्ले करेंगे, ये गीत जो था जो आपने अभी सुना कई बार हुई देखा है, प्रताप वर्मा जी ने भी इसकी डिमांड की थी और भी बहुत सारे श्रोता है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप सबकी जो पसंद है वो भी मिलती जुलती है। और अगला गीत है बेदर्दी बालमा तुझको, फिल्म है आरजू और फरमाइश करने वाले हैं अहमद फूलवाले जी, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: मन भावन में अगली फरमाइश है विजय सुरालकर रत्नमाला और कुमकुम जी की। मोताला महाराष्ट्र से हमें लिखते हैं, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत चलो सजना जहां तक घटा चले सुनना चाहते हैं।

0: करके बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मन भावन कार्यक्रम के पेशकर्ता को सादर नमस्कार। नमस्कार जी, शहदोल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला जी फरमाइश कर रहे हैं गीत की जोत से जोत जगाते चलो, फिल्म है संत ज्ञानेश्वर, आइए सुनते हैं ये गीत।

बसंत कुमार सिन्हा जी हमको लिखते हैं, सलाम आदाब कबूल करें, आपका भी सलाम। ये चाहते हैं फिल्म गुमनाम से गीत सुनना, और ये गीत हमारे पास है कि नहीं है ये हम देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है, दमदम एयरपोर्ट से इनके साथ रेखा हैं, अजय कुमार गुप्ता हैं, अभय कुमार हैं, श्रीमती रेखा देवी साव भी हैं, और नन्हे मुन्ने अन्विका और तनुष भी हैं, सब सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मन भावन। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा और लखन बाल जी पारसमणि फिल्म का ये गीत फरमाइश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन भावन सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हरजिंदर सिंह भाटिया जी कह रहे हैं कि हम थोड़ा लेट आए हैं पर हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए, लग गई है जी। गौरी शंकर वर्मा जी लिख रहे हैं, रूमी बेटा दूसरा गाना लिख रहा हूँ, फिल्म है बिन बादल बरसात और गीत है जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी शंकर अंकल लिख रहे हैं नांगलोई से, और आपका पहला संदेश हमें देखना होगा, लेकिन दूसरा था संदेश शायद पहले पढ़ लिया है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। महाराष्ट्र के उमरखेड़ से आशा रेडियो श्रोता संघ के अभिजीत गमहणकर राही, श्रीमती सरिता गमहणकड़, प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन, साथ में वैशाली, शैलेश, सुमित, कुमारी ध्वनि और प्रिंस एकांश, आप सभी फरमाइश कर रहे हैं बादल फिल्म का ये गीत, दो दिन के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला

0: एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमित कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Supreme Court today ruled that the process of determining citizenship or declaring an individual a foreigner must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. The Apex Court was hearing a batch of petitions filed by 27 people who had been declared foreigners by the foreigners' tribunals in Assam. The Supreme Court set aside the judgments of the Guwahati High Court that had upheld declarations of 27 appellants as foreigners. A bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta acknowledged that the state has a legitimate and compelling interest in ensuring that those not legally entitled to Indian citizenship do not obtain it through false claims, misuse of legal process, or delay, but stressed that due process

0: now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग इन प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप महाप्रबंधक ज्ञान सेवाएं एक पद, उप महाप्रबंधक पूर्व छात्र संबंध एक पद, वरिष्ठ प्रबंधक लेखा परीक्षा एक पद, प्रबंधक अकादमिक एक पद, प्रबंधक प्रत्यायन एक पद, सहायक प्रबंधक आईटी अवसंरचना एक पद और सहायक प्रबंधक मैकेनिकल अवसंरचना एक पद। अधिक जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026। दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2026 के लिए 25% प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के अंतर्गत पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या सामान्य वर्ग के लिए 17, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5, कुल 27 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेतनमान रहेगा J5 यानी 1,44,000 रुपये 840 से लेकर 1,94,660 रुपये। पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए कृपया दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट देखिए www.delhihighcourt.nic.in। इस विज्ञापन से संबंधित भविष्य की किसी भी अधिसूचना या शुद्धि पत्र केवल दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्रकाशित होगा। बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता एक पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन आवेदन प्रक्रिया नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु इनटेक के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक है। ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 सितंबर 2026 को होनी है। उम्मीदवारों को आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करना होगा और इसके लिए विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं इस वेबसाइट पर iafrecruitment.edcil.co.in। विस्तृत नियम और शर्तें आप 4 से 10 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी देख सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। श्रोताओं हर दिन अपने साथ घटनाओं का एक नया अध्याय लेकर आता है। कुछ घटनाएं आज की सुर्खियां बनती है तो कुछ यादें इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर हमें प्रेरित करती है। परिक्रमा के इस अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया के प्रमुख खबरों से, साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी उपलब्धियां आज भी हमारे समाज और संस्कृति को समृद्ध बना रही है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
5: हेलो वैष्णवी। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: Yes, and today we are talking about something that affects every one of us, water.
1: बिल्कुल अभिषेक, हम सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से बरसने वाला ये अनमोल पानी आखिर जाता कहाँ है?
0: A great question, Vaishnavi, and much of it simply flows away. But imagine if we could save every drop where it falls.
1: जल शक्ति अभियान, यानी कैच द रेन अभियान के पीछे ठीक यही सोच है.
0: And the simple yet powerful message is, Vaishnavi, catch the rain where it falls, when it falls. And this nationwide campaign led by the Minister of Jal Shakti under the National Water Mission encourages people across India to harvest rainwater and recharge groundwater.
1: और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल सरकार की पहल नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का अभियान है. घर हो या स्कूल, गांव हो या शहर, हर व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है.
0: And you know what, Vaishnavi, people often ask, why should we bother collecting rainwater when we get water from taps?
1: जी, और अभिषेक, आपने ज्यादा देखा है कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है, जैसा कि आपने पूछा. लेकिन श्रोताओं, देश के कई हिस्सों में भूजल का स्तर लगातार घट रहा है. ऐसे में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूजल को फिर से भरने, पानी की कमी को कम करने, खेती को सहारा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखने का एक प्रभावी उपाय है.
0: Exactly, Vaishnavi. And every drop we save today becomes a lifeline tomorrow. Mm-hmm. And the campaign focuses on five important areas. Let's take them one by one, shall we?
1: जी, पहला है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन. इसके अंतर्गत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चेक डैम और जल संचयन गड्ढों जैसी संरचनाएं बनाकर वर्षा के पानी को सहेजने पर जोर दिया जाता है.
0: एंड सेकंड ऑफ कोर्स, वैष्णवी, इज द रेनोवेशन एंड द मैपिंग ऑफ वाटर बॉडीज, क्लीनिंग पॉन्ड्स, लेक्स एंड टैंक्स, रिमूविंग एनक्रोचमेंट्स, डीसिल्टिंग देम एंड इवन जियो टैगिंग देम सो दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड.
1: वहीं तीसरा है जल स्रोतों का पुनः उपयोग और भूजल रिचार्ज, यानी पुराने और या अनुपयोगी बोरवेल और कुओं को बेकार छोड़ने के बजाय उन्हें भूजल रिचार्ज के लिए उपयोग में लाया जाता है, ताकि वर्षा का पानी दोबारा धरती के भीतर पहुंच सके.
0: एंड स्पीकिंग ऑफ द फोर्थ इंपॉर्टेंट एरिया, वैष्णवी, इज द इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन. प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प्स द सॉइल रिटेन मॉइस्चर एंड अलाउज मोर रेन वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड नेचुरली.
1: और अभिषेक, पांचवा है यानी आखिरी, जन जागरूकता. क्योंकि अभिषेक, किसी भी अभियान की सफलता तभी संभव है जब समाज का हर व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी समझे और उसमें सक्रिय भागीदारी निभाए.
0: So we have covered all the five important areas, isn't it? And you know what, rainwater harvesting sounds like a simple idea, but its benefits are truly remarkable.
1: बिल्कुल श्रोताओं, हम केवल पानी ही नहीं बचाते, बल्कि आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाते हैं.
0: Absolutely, and for starters, rainwater harvesting helps recharge groundwater, which means wells and borewells are more likely to have water even during dry seasons.
1: साथ ही ये घरों, बगीचों और खेती के लिए पानी का एक अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध कराता है, खासकर गर्मियों में जब पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब इसका महत्व और बढ़ जाता है.
0: And here's another advantage, Vaishnavi. It helps reduce flooding and soil erosion. Instead of rainwater rushing away and causing waterlogging, it gets absorbed in the ground.
1: अभिषेक, बल्कि इतना ही नहीं, किसानों के लिए भी ये बेहद लाभदायक है. अगर हम देखें तो भूजल का स्तर बेहतर होने से सिंचाई आसान होती है, फसलों की गुणवत्ता सुधरती है और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है.
0: And also not to forget, Vaishnavi, rainwater harvesting also helps save energy and reduce the cost of pumping and treating water, making it an environmentally friendly and sustainable solution.
1: श्रोताओं, यानी हर छत पर बना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हर जल संचयन गड्ढा और हर चेक डैम्स जल संरक्षण की दिशा में एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावी कदम है.
0: Absolutely, Vaishnavi, and one season of rain can create benefits that last all year. That's why every drop we harvest today helps build a stronger, greener and more water secure India.
1: श्रोताओं, यहाँ पर आपके लिए छोटा सा सवाल है. क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके घर, स्कूल या कार्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या नहीं?
0: If the answer is yes, Vaishnavi, it's wonderful. If not, maybe this monsoon is a perfect time to start the conversation.
1: श्रोताओं, याद रहे, छोटे छोटे प्रयास जैसे पानी की बर्बादी रोकना, नालियों की सफाई, तालाबों का संरक्षण और अधिक से अधिक पेड़ लगाना मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं.
0: And remember, rain water is one of the nature's greatest gifts. Conserving it today means ensuring clean and sufficient water for tomorrow. So to conclude our discussion today, Vaishnavi, this monsoon, don't just watch the rain. catch the rain where it falls, when it falls. Together, we can recharge our groundwater, strengthen our communities and build a water-secure India.
1: श्रोतव आइए इस मॉनसून हम सब एक संकल्प लें, पानी बचाए, हर बूंद का सम्मान करें और अपने परिवार, दोस्तों व समाज को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें, क्योंकि याद रखिए हर बूंद कीमती है और आज बचाया गया पानी ही कल का सुरक्षित भविष्य है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0112331048, 0112371711, 0112371706 और 0112331444। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
1: Yes, absolutely, Vaishnavi, and we start off with a story from Vishakhapatnam. And the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Vizianagaram is emerging as a dedicated institution for tribal education, research and community development. We have more from a correspondent.
2: The Central Tribal University of Andhra Pradesh seeks to expand higher education opportunities for tribal youth. It also works to preserve tribal culture, languages, traditions and indigenous knowledge system. The university promotes research on tribal livelihoods, medicinal practices, forest resources and sustainable development. It is also developing tribal-centric models for inclusive growth. Through its science and technology hub, the university is taking the benefits of modern science to tribal communities in North Andhra Pradesh. Its programs focus on skill development, public health, nutrition, climate resilience and local entrepreneurship. Speaking at the first convocation of the university held recently, President Draupadi Murmu said the institution has a special responsibility to build confidence and leadership among tribal youth.
3: Andhra Pradesh ka ek kendriya janajatiya vishwavidyalay apna sarthak samaveshi aur paryavaran sarakshan par kendrit vyavaharik sarakshan paddhati se is lakshya prapti kare और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यहाँ के जनजातीय समाज की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली कि समाज के इस वर्ग को आधुनिक शिक्षा के उपयोगी आयामों से जोड़कर ये विश्वविद्यालय देश के समतापरक विकास में यहाँ के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा।
2: The president expressed confidence that the university would play a key role in empowering tribal communities and contribute to the vision of Viksit Bharat by 2047. Allu Murali for Parikrama, Akashvani News, Vishakhapatnam.
0: श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की चिप क्रांति को आगे बढ़ाने में झारखंड की बेटियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं? जी हाँ, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में शुरू हुए नए सेमीकंडक्टर प्लांट में झारखंड की बेटियां की ऐतिहासिक भागीदारी देश के लिए गर्व की बात है। आइए सुनते हैं हमारी रांची संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
4: कभी पिछड़े समझे जाने वाले झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से निकलकर यहां की बेटियां आज देश की सबसे आधुनिक तकनीक यानी माइक्रोचिप का निर्माण कर रही हैं। गुजरात के सांणंद में सीजी सेमी के नए प्लांट में जब कमर्शियल चिप प्रोडक्शन की शुरुआत हुई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बेटियों का आत्मविश्वास देखकर गदगद हो गए।
5: उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर।
4: प्रधानमंत्री की ये सराहना झारखंड के गिरिडीह, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम सहित आदिवासी क्षेत्रों की बेटियों के संघर्ष का सम्मान है। घरेलू चिप उत्पादन की कमान संभालने से पहले इन महिलाओं ने विशेष प्रशिक्षण के लिए मलेशिया की भी यात्रा की। गिरिडीह की मशीन ऑपरेटर पूनम कुमारी ने प्रधानमंत्री के संवाद में अपनी इस अद्भुत यात्रा का अनुभव साझा किया है।
6: पहले तो लगता था कि हाँ, गाँव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है, रांची में जब मैं थी कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए, लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ, एक्चुअल में कुछ कर रही है।
4: टाटा स्टील तकनीकी संस्थान जमशेदपुर से डिप्लोमा कर देश की पहली कमर्शियल चिप कोर टीम का हिस्सा बनी जूनियर इंजीनियर तनीषा गौतम ने भी इस मिशन को अपने पूरे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।
7: लड़कियाँ अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही है, सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है।
4: स्पष्ट है कि झारखंड की इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि अगर सही अवसर मिले तो भारत की ग्रामीण प्रतिभाएं ग्लोबल इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स को भी मात दे सकती हैं। परिक्रमा के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
1: Yes, and from Ranchi, we now turn our attention to Nagaland and Kohima. And Nagaland has launched the Unified Digital Agriculture Ecosystem, a comprehensive digital platform expected to improve access to information advisory services and markets across the state. And let's hear more from a Kohima correspondent.
8: The new platform is designed to eliminate traditional bottlenecks in the supply

0: chain and ensure that farmers, particularly in remote areas, have better access to essential information and government support. The unified digital agriculture ecosystem brings together several advanced technologies under one umbrella. Among its key features are AI-driven market intelligence to provide price forecasts and demand analysis, IoT-based smart field monitoring to deliver real-time soil and weather data, and an AI-powered chatbot, Kitty Manu, which will provide farming advisory and technical guidance in local dialects. The integrated platform also includes GIS services, an enterprise resource planning system, and an e-hub linking all district agriculture offices to strengthen coordination and service delivery. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashwani News, Kohima.
1: श्रोताओ अब रुक करते हैं कर्स्योंग की तरफ। नेपाली जगत के प्रख्यात प्रथम कवि, लेखक व अनुवादक भानुभक्त आचार्य की 212वीं जन्म जयंती देश विदेश में भव्य रूप से मनाई जा रही है। 13 जुलाई 1814 में नेपाल के तनहू जिला में जन्मे भानुभक्त आचार्य ने वाल्मीकि रामायण को सरल नेपाली भाषा में अनुवाद कर जन जन में नेपाली भाषा को लोकप्रिय बनाया था। आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
2: देश विदेश में विशेष करके भारत में नेपाली गोरखा आबादी वाले राज्यों तथा नेपाल में आज विविध साहित्यिक व सांस्कृतिक समारोहों के साथ 212वीं भानुभक्त आचार्य जयंती पालन किया जा रहा है। नेपाली भाषा के प्रथम कवि, लेखक व अनुवादक भानुभक्त ने संस्कृत भाषा के वाल्मीकि रामायण का सरल नेपाली भाषा में अनुवाद किया, जिसने नेपाली भाषा को सहज भाव से जन जन तक पहुँचाने तथा भाषा को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता को एक मजबूत आधार प्रदान करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़, तराई व डुअर्स, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में आज विशेष समारोहों का आयोजन किया गया है तथा भानुभक्त आचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। दार्जिलिंग पहाड़ तथा सिक्किम में विशेष शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी व विविध संघ संगठनों ने भाग लिया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्स्योंग।
3: एंड फ्रॉम दार्जिलिंग सम न्यूज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। And in Bihar, tourists will now be able to enjoy heli and air tourism services. Chief Minister Samrat Chaudhary today launched the Bihar Heli Tourism and Air Tourism Service Scheme at a function held in Patna. An online booking portal for the service was inaugurated on the occasion.
1: अब आइए सुनते हैं नागपुर के ताजबाग शरीफ में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक हजरत ताजुल औलिया बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 114वें सालाना उर्स के अवसर पर निकाले गए शाही दरबारी संदल पर ये विशेष रिपोर्ट।
4: नागपुर का ऐतिहासिक ताजबाग इन दिनों आस्था, श्रद्धा और सूफियाना रंग में सरोबार है। हजरत ताजुल औलिया बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 104वें सालाना उर्स के अवसर पर शाही दरबारी संदल पूरे शानो शौकत के साथ निकाला गया। इस अवसर पर संदल में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि
5: आपका सबका जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से मुक्त हो और आपको अच्छा जीवन प्राप्त हो, इसलिए हजरत बाबा ताजुद्दीन आपको भी और मुझे भी अपना आशीर्वाद दें।
4: हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से उर्स के दौरान प्रतिदिन लगभग 5000 लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
3: Yes, and from Nagpur on to Jammu and Kashmir, and the world's highest railway arch bridge, the Chinab Bridge in Riasi district, has become a major attraction for pilgrims undertaking the annual Sri Amarnath Ji Yatra. Akashvani Jammu correspondent reports that thousands of devotees travelling through the region are making brief stops to witness the engineering marvel towering above the Chinab River, and the bridge has become a popular photo and sightseeing destination, adding a unique travel experience to the spiritual journey.
1: अभिषेक, अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल।
3: एंड वी स्टार्ट ऑफ विद द बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप्स। एंड इंडियन बॉक्सर्स रिमेन्ड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एट द एशियन अंडर 19 एंड अंडर 23 चैंपियनशिप्स, विद 8 ऑफ देम एडवांसिंग टू द फाइनल्स अक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स अंडर 23 कैटेगरीज एंड 7 अदर्स सिक्योरिंग ब्रॉन्ज मेडल्स आफ्टर सेमीफाइनल फिनिशेस इन जकार्ता। And on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended with minor gains today, reflecting a subdued trading session, and the Sensex edged up 47 points to close at 77,616. The Nifty added 4 points to settle at 24,211. For more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: श्रोताओं, अब बात उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं आशापूर्ण देवी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। बांग्ला साहित्य की महान लेखिका आशापूर्ण देवी ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज, विशेषकर महिलाओं के जीवन और संघर्षों को नई आवाज दी। उनकी कालजयी, त्रयी प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा भारतीय साहित्य की अमूल धरोहर मानी जाती है। साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, रविंद्र पुरस्कार तथा पद्मश्री सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 1983 विश्व कप की जीत का जिक्र यशपाल शर्मा के बिना अधूरा माना जाता है। वे भारतीय टीम के भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज थे और विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई उनकी 89 रनों की शानदार पारी आज भी भारतीय क्रिकेट के यादगार पारियों में गिनी जाती है। उनके जुझारू प्रदर्शन ने भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
3: Yes, and we also remembering Beena Rai, who was born on this day in 1931. She was an acclaimed Indian actress and a major star during the black and white era of Hindi cinema. Born in British India, she is best remembered for playing tragic and romantic heroines in a timeless classics like Anarkali, 1953, Taj Mahal, 1963. And she also won the Filmfare Award for Best Actress for Ghoonghat in 1960. She made her debut with Kali Ghata in 1951 and was married to prominent actor Prem Nath Malhotra. Let's listen into a dialogue from one of her movies.
6: खबरदार लड़की।
7: बाजी, एक तो पराई लड़कियों से गाने को कहते हो और ऊपर से अकड़ दिखाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें?
6: हम इनकी तरफ से तुमसे माफी चाहते हैं।
7: हम तुमसे माफी मांगते हैं। अच्छी माफी है ये। अपने आप को हम और मुझे तुम, जैसे तुम कोई बादशाह हो।
6: अब इसका जवाब हम तुम्हें क्या दे सकते?
7: तो फिर चले जाओ यहाँ से।
6: और अगर हम जाने से इनकार करें तो?
7: तो फिर मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी।
6: किससे?
7: अकबर बादशाह, सजा दो।
6: ऐसा ना करना।
1: अभिषेक, बीना राय की अदाकारी जितनी यादगार रही उतनी ही अमर उनकी फिल्मों के गीत भी रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने पाकीज़ा फिल्म का जिक्र किया, तो आइए श्रोताओं को सुनाते हैं उस फिल्म का एक खूबसूरत गीत, ये जिंदगी उसी की है।

सुरों की साधना जब तपस्या बन जाए तब जन्म लेती है केसरबाई केरकर जैसी महान विभूतियाँ। केसरबाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा में हुआ था। विजयपुर अत्रौली घराने की महान शास्त्रीय गायिका थी। अपनी विलक्षण गायकी, शुद्ध स्वरों और कठिन रागों पर अद्भुत पकड़ के कारण उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी। ललित, तोड़ी, बसंत बहार और कई दुर्लभ रागों की उनकी प्रस्तुतियां आज भी संगीत प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए आदर्श मानी जाती है। भारतीय संगीत में उनकी असाधारण योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। केसरबाई केरकर की गायकी का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं समाया जा सकता। आइए अब उनकी स्वर साधना की एक अनुपम झलक सुनते हैं।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे ही हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।
1: हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रताप

0: पुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये मकनपुर, नवाडीह, पोंडिपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदननगर, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपाल पुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, हरिहरपुर, नीलकंठपुर, अनिरुद्धपुर, चिनिया, कनकपुर, टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडीह, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, तपकरा, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये धूरी अम्बा, करडेगा, केंदापानी, मधुटोली, सेमरताल, साजबहार, बामनमारा, जमुना, खड़ामाचा, हरदीझरिया, पीठा आमा, महेशपुर, चेटबा, मड़ियाझरिया, सोनाजोरी, झिक्की, परसाडा, कुरडेग, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 92 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछाप, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागरपाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वनमंडल के केंदई, एतमानगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 56 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा, बोडापाला, जारनडीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा वर्तमान में जीना सीखें, क्रम हेलो युवाणी और दृष्टिकोण। शाम 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे

रीता शर्मा, चंदना सेन और साथी। 8:15 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगे पुष्पा हंस। शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा जुन्ना तालाब के रखरखाव और संरक्षण। आज की सलाह में सुनिएगा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर का फसलों पर उपयोग, विधि एवं लाभ। जानकारी देंगे श्री राजेश कुमार गोले, उप महाप्रबंधक विपणन। रात्रि 10 बजे सुनिएगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित डी के दातार का वायलिन पर बजाया राग यमन और राग पंचम से घारा। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको

0: पारिवारिक धारावाहिक जिसमें आलेख होगा आलोक सिंह का और प्रस्तुति समीर शुक्ल की होगी। कल सुबह 9:40 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे महत्तर राम साहू और साथी। कल सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर प्रायोजक छत्तीसगढ़ संवाद। 11:05 पर समूह गान शिक्षा में सुनेगा उड़िया भाषा की शिक्षा, रचना होगी केसी पाणिग्रही की। 11:30 पर सदाबहार नग में आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12 बजे। आइए आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा वर्तमान में जीना सीखें, क्रम हेलो युवाणी और दृष्टिकोण। शाम 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगी ललिता शर्मा, चंदना सेन और साथी। रात्रि 8:15 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगे पुष्पा हंस। शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा जुन्ना तालाब के रखरखाव और संरक्षण। आज की सलाह में सुनेगा नैनो यूरिया और नैनो DAP फसलों पर उपयोग, विधि एवं लाभ जानकारी देंगे श्री राजेश कुमार गोले, उप महाप्रबंधक विपणन। रात्रि 10 बजे सुनिएगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित पुराने फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनेगा पंडित DK दातार का वायलिन पर बजाया राग यमन और राग पंचम से गारा। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।
1: मेरी सारी यादें अतीत के लिए थी, मेरा सारा इंतजार भविष्य के लिए था। जो कुछ बिना याद के है, बिना इंतजार के है, वो मेरा वर्तमान है।
2: इन पंक्तियों के साथ आप सबका स्वागत है साथियों। आप सुन रहे हैं आप सबका अपना कार्यक्रम युवाणी। मैं हूं आपका साथी दीपक तिवारी।
1: और मैं हूं आपका साथी रक्षित वहाने। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा विषय जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। दोस्तों,
2: सच कहूं रक्षित, जिंदगी के बारे में सोचते ही मन में एक ही बात आती है, कितनी बार हम जीवन की असली खुशियों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं।
1: बिल्कुल, हम कहते रहते हैं काश मैं 10 साल पहले ऐसा करता तो आज जिंदगी अलग होती, या फिर भविष्य में सब अच्छा होगा तो मैं सुकून से रहूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सुकून तो इसी पल में है, क्योंकि यही पल हमारे हाथ में है।
2: बिल्कुल साथी, और मुझे एक पंक्ति याद आती है, कल की फिक्र में आज खोना देना, जो पल है सामने उसे जी भर के जी लेना।
1: वाह, सच है दीपक। सुबह जब सूरज निकलता है तो वो हमसे कहता है आज तुम्हारा है, लेकिन हम तो कल की उदासी और आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं।
2: और ये सिर्फ हम युवाओं की ही बात नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी यही गलती करते हैं। कोई कहता है कि अरे हमारा जमाना बहुत अच्छा था, और कोई कहता है अभी तो बस परेशानियां हैं, आगे सब कुछ ठीक होगा।
1: लेकिन दीपक, अगर हर वक्त हम सोचते ही रहेंगे तो जीने का वक्त कब मिलेगा? जीवन कोई परीक्षा का पेपर तो नहीं है जिसे बाद में जांचना है, ये तो बहती नदी है जिसे अभी अभी पार करना है।
2: बिल्कुल सही कहा, और खासकर युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि ज्यादातर युवा मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने खो जाते हैं कि उनके सामने जो असली जीवन है वो छूट जाता है।
1: वाकई दीपक, कितनी बार ऐसा होता है कि परिवार के साथ खाना खाते वक्त भी हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, हंसी मजाक बातचीत सब स्क्रीन की दुनिया में खो गई है।
2: और यही कारण है कि रिश्तों में दूरियां भी बढ़ रही हैं। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो न सिर्फ रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि पढ़ाई, करियर और जीवन सब कुछ संतुलित होगा।
1: दीपक, मुझे एक सवाल पूछने का मन हो रहा है।
2: बिल्कुल।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब आपने सिर्फ उसी पल को जीने की कोशिश की हो, बिना मोबाइल, बिना चिंता, बिना कल कल कल की भागदौड़?

0: और शायद बहुत कम लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो सचमुच जीवन का असली स्वाद चख पाते हैं।
1: वाकई दीपक, मुझे एक प्रेरक घटना याद आ रही है। एक साधु अपने शिष्य से कहते हैं, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तीन बातों को याद रखो।
0: अच्छा।
1: पहली, बीते कल पर अफसोस मत करो। दूसरी, आने वाले कल की चिंता मत करो। तीसरी, आज जो भी करो उसमें दिल से जी भर के शामिल हो जाओ।
0: यही तो जीवन का असली मंत्र है दोस्त।
1: और ये सिर्फ धर्म या आध्यात्म की बात नहीं है, विज्ञान भी हमसे यही कहता है। जो लोग वर्तमान में रहते हैं उनका तनाव कम होता है, उनकी सेहत बेहतर रहती है और वे ज्यादा खुश रहते हैं।
0: वाकई, मनोविज्ञान की भाषा में इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, यानी हर पल को पूरी सजगता और खुशी से जीना।
1: दीपक, तुम सोचो, बचपन में जब हम खेलते थे तब क्या हमें कल की चिंता होती थी? नहीं ना,
0: बिल्कुल नहीं।
1: उस वक्त हम बस खेल में खोए रहते थे, वही असली खुशी थी।
0: बिल्कुल सही कहा, और यही कारण है कि बचपन की यादें इतनी सुनहरी लगती हैं, लेकिन असल में वो सुनहरी इसलिए थी क्योंकि हमने उन पलों को पूरी तरह जिया था।
1: और अब जब बड़े हो गए हैं तो क्यों ना उसी मासूमियत को वर्तमान में जी लें।
0: बिल्कुल, चाहे दोस्तों के साथ गपशप हो, या माँ के हाथों का खाना हो, या किसी अजनबी की अजनबी सी मुस्कान हो, ये सब पल कभी लौट कर नहीं आते, इसलिए इन्हें महसूस करिए, इन्हें जीने की कोशिश करिए।
1: दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज को व्यर्थ मत जाने दो। आज अगर मेहनत करोगे तो कल कामयाबी मिलेगी। आज अगर रिश्तों में प्यार बांटोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। आज अगर सेहत का ध्यान रखोगे तो भविष्य में बीमारी नहीं सताएगी।
0: बिल्कुल, और याद रखिए साथियों, आज ही वो जगह है जहां से कल की नींव बनती है।
1: दीपक, एक छोटी सी पंक्ति याद आई, जो है सामने वही सबसे प्यारा है, कल का सपना तो बस सहारा है। आज अगर मुस्कुरा लिए दिल से तो जीवन सच में हमारा है।
0: वाह रक्षित, कितना सुंदर संदेश दिया है तुमने। और सचमुच अगर हम हर दिन को ऐसे जी लें जैसे ये जीवन का आखिरी दिन हो, तो शायद हमारी दुनिया ही बदल जाए।
1: दोस्तों, तो आज की चर्चा का सार यही है कि आपका वर्तमान ही सबसे बड़ा खजाना है, तो इसे खोइए मत।
0: बिल्कुल, क्योंकि अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सपना है, लेकिन वर्तमान ही अपना है।
1: इसीलिए आज का हर पल जी भर कर जियो, खुश रहिए, मेहनत करिए और प्यार बांटते रहिए, यही जीवन का असली अर्थ है।

0: श्रोताओं, राजकीय शोक के कारण आज प्रसारित होने वाले क्रम हेलो विवाणी का प्रसारण नहीं किया जा रहा है। इसका प्रसारण चौथे सोमवार यानी 27 जुलाई को किया जाएगा।
1: दोस्तों, बीते दिनों छत्तीसगढ़ में एक शोक का माहौल रहा है। हमारे एक बेहद प्रसिद्ध और चहेते सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
0: साथियों, हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार तीजन बाई जी का। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पंडवानी लोक गाथा गायन शैली को नई पहचान दिलाई।
1: गांव की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति से महाभारत की कथाओं को जीवंत बना दिया।
0: उनकी कला को देश ही नहीं विदेशों में भी खूब सराहा गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अनेक सम्मान उनकी उपलब्धियों का प्रमाण है।
1: तीजन बाई हमें सिखाती हैं कि लगन, मेहनत और अपनी संस्कृति से प्रेम हो तो सफलता निश्चित है।
0: बिल्कुल, हम सभी अपनी लोक कला और संस्कृति पर गर्व करें। इसी के साथ अब वक्त हो चला है इस गीत का।

0: फिल्म कल हो न हो से सुन रहे थे आप ये गीत। स्वर था सोनू निगम का, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। साथियों,
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
2: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
3: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 सालों से निरंतर सेवा में
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।

0: साथियों, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आ रही है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा, कुछ तैरूंगा कुछ डूब जाऊंगा, पहाड़ टीले चट्टाने तालाब असंख्य पेड़ खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर, खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव गांव जंगल गलियां जाऊंगा।
1: जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा।
0: दोस्तों, जीवन में लोगों से मिलना तो होता ही रहता है, पर जिनसे मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा मिले उनसे मिलते रहना चाहिए।
1: फिलहाल मौका है इस गीत का।

0: फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से सुन रहे थे आप ये गीत। स्वर था शिवाजी चट्टोपाध्याय का, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने।
1: दोस्तों, जीवन हमें हर सुबह एक नया अवसर देता है, बस जरूरत है उसे पहचानना और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की।
0: सफलता रातों रात नहीं मिलती साथियों, छोटे छोटे प्रयास

0: अनुशासन और धैर्य ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल, यदि आज एक कदम भी आगे बढ़े हैं तो समझिए आपने अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शुरुआत कर दी है।
0: तो आइए आज संकल्प लें कि हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म सीमा से सुन रहे थे आप ये गीत। स्वर था मोहम्मद रफ़ी का, गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।
1: साथियों, जीवन के कितने ही रंग हैं, सुख है तो दुख भी है, पर आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है।
0: वाकई रक्षित, जीवन गतिमान ही रहता है और इसका गतिमान रहना भी बहुत ज़रूरी है। समय के पहिए में घूमते हुए यादों का बवंडर भी धीरे धीरे गुजर जाता है।
1: इसीलिए

0: साथियों, किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म पिया का घर से सुन रहे थे आप ये गीत, जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: साथियों, अक्सर सफल लोग एक बात कहते हैं, समय के साथ चलना ज़रूरी है। पिछले दिनों की बातें और गुजरी हुई यादें बस बीत जाती हैं, पर हम उनकी यादों में खोए रहेंगे तो वर्तमान को भूल ही जाएंगे।
0: वाकई दीपक, जितना पीछे देखना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आगे देखना। आगे देखना यानी कल की योजनाओं की तरफ ध्यान देना, उन्हें साकार करने के लिए प्रयास करना।
1: बिल्कुल, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति याद आ रही है, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले।

0: फिल्म संजोग से सुन रहे थे आप ये गीत। स्वर था मुकेश का, गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने।
1: दोस्तों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें वक्त बहुत कठिन लगने लगता है, सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। तब बहुत ज़रूरी है कि हम उदास ना हों, बल्कि उस समय का डट के सामना करें।
0: बिल्कुल सही कहा रक्षित तुमने। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं साथियों, लेकिन जो इस समय से लड़ जाता है, जीवन की रेस में जीत भी

0: उसी की होती है।
1: वो कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी
0: हार
1: हार नहीं
0: नहीं
1: होती।
0: होती, बिल्कुल सही बात तुमने कहा। और इसी के साथ वक्त हो चला है आप सबको ये गीत सुनवाने का।

0: फिल्म लेकिन से सुन रहे थे आप ये गीत। स्वर था लता मंगेशकर का, गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने। साथियों, राजकीय शोक के कारण आज प्रसारित होने वाले क्रम हेलो युवाणी का प्रसारण नहीं किया जा सका है। इसका प्रसारण 27 जुलाई को किया जाएगा।
1: साथियों, अभी वक्त है आपके अपने पसंदीदा क्रम दृष्टिकोण का।
0: बिल्कुल रक्षित, दृष्टिकोण केवल श्रोताओं का ही पसंदीदा क्रम नहीं बल्कि हमारा भी बेहद पसंदीदा क्रम है, क्योंकि इस क्रम में हमें हमारे श्रोताओं के अलग अलग विषयों पर विचार जानने को मिलते हैं। तो अब बिना देर किए देखते हैं कि आज विषय बढ़ती जनसंख्या का समाज पर प्रभाव पर सबसे पहला ईमेल किस श्रोता साथी ने भेजा है।
1: आज का पहला ईमेल आया है खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे का। ये लिखते हैं, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। किसी समाज में जनसंख्या की वृद्धि वहाँ मौजूद प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है तो समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि मनुष्य के रहन सहन, पारिवारिक संबंधों, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं पर दबाव अधिक होने लगता है, जिसमें जल, बिजली और अनाज जैसी आवश्यक चीज़ों के लिए लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। आवास की कमी, बेरोजगारी, अपराधों में वृद्धि, संक्रामक बीमारियों का फैलना और पर्यावरण प्रदूषित होता है। सीमित आय और परिवार में सदस्यों की वृद्धि से जीवन स्तर गिरने लगता है।
0: बिल्कुल, वास्तव में बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव सिर्फ संसाधनों पर ही नहीं बल्कि समाज, परिवार, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे में शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग बहुत जरूरी है। साथियों, अगर हम आज से ही इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके ये विचार हमारे सभी श्रोता साथियों को अच्छे लगे होंगे और उन्हें गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित भी करेंगे। आपका इन विचारों के लिए बहुत शुक्रिया।
1: तो दीपक, अगला पत्र हमें कहाँ से आया है?
0: रक्षित, अगला पत्र आया है कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति यादव का। ये लिखते हैं, जनसंख्या वृद्धि का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ जाता है। इससे बेरोजगारी, गरीबी और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यातायात, प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों भी लगातार बढ़ती हैं। दूसरी ओर, यदि जनसंख्या शिक्षित और कुशल हो तो वो देश के विकास में योगदान भी दे सकती है। जनसंख्या वृद्धि से समाज में सकारात्मक रूप से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण और संसाधनों का उचित प्रबंधन समाज के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।
1: सचमुच, बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव समाज के लगभग हर क्षेत्र पर दिखाई देता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या पर्यावरण। आपने ये भी सही कहा कि यदि जनसंख्या शिक्षित, जागरूक और कुशल हो तो वही देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों की संतुलित उपयोग भी उतना ही जरूरी और आवश्यक है। प्रेरणादायक विचारों को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: तो रक्षित, अगला ईमेल हमें कहाँ से आया है?
1: अगला ईमेल हमें आया है ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता का। ये लिखते हैं, आज जनसंख्या वृद्धि हमारे समाज पर, देश पर, परिवार पर अधिक बोझ बन चुका है, क्योंकि आज परिवार छोटा होगा, जनसंख्या कम होगी तो हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं, और परिवार अगर बड़ा होगा तो सभी चीज़ों की पूर्ति नहीं कर सकते। परिवार के साथ साथ देश पर भी अधिक भार पड़ेगा, समाज पर भी अधिक

0: भार पड़ेगा। इसीलिए हम दो हमारे दो के नारे के साथ संतुलित परिवार रखें, इससे हमारे परिवार पर, समाज पर, देश पर कोई प्रभाव ना पड़े।
1: बिल्कुल, संतुलित परिवार न सिर्फ परिवार की खुशहाली का आधार बनता है बल्कि समाज और देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने इतने महत्वपूर्ण विचार हमें भेजे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो दीपक, अगला ईमेल हमें कहाँ से आया है?
1: रक्षित, अगला ईमेल हमें आया है टिकरापारा रायपुर से लता देवी चौहान का। ये लिखती हैं, यदि जनसंख्या की वृद्धि उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाए तो इसका समाज पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि, गरीबी और आर्थिक समस्याएं, संसाधनों का बंटवारा, लोगों को पर्याप्त भोजन न मिलना जैसी बहुत सी समस्याएं होती है। इसलिए शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को संतुलित रखना जरूरी है ताकि समाज का सतत और समृद्ध विकास हो सके।
0: बिल्कुल, जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक बढ़ जाती है तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद।
1: तो रक्षित, अगला ईमेल कहाँ से आया है?
0: अगला ईमेल आया है सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल, किशन पटेल का। ये लिखते हैं, किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
1: बिल्कुल साथी, आपने बहुत ज़रूरी बात कही है और इसी तरह की बात आप लिखते रहें। हम आपको दृष्टिकोण का अगला विषय बता देते हैं। दृष्टिकोण का अगला विषय है सड़क सुरक्षा और मोबाइल, और हम आपको भेजने के लिए पता भी बताते हैं। हमारा पता है क्रम दृष्टिकोण युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड है 4920001। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं जिसके लिए हमारा पता है airyouth9@gmail.com। साथियों, बातचीत करते हुए वक्त हो चला आप सबसे विदा लेने का, पर बता देते हैं कल के कार्यक्रम, कल की युवाणी सरगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। इसी के साथ दीजिए अपने साथी दीपक
0: और रक्षित को अनुमति।
2: मीडियम वेव और युवाणी अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
4: कानपुर के पास

0: ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार।
2: हेलो।
0: अरे सुमित।
2: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
2: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
2: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
2: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
2: हाँ बोल यार।
0: सुमित
2: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
2: ठीक है, और कौन आएंगे?

0: जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
1: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब से आप थोड़ी देर में सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मैं स्मिता शर्मा। आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र शुरू। सदन में प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई ला देगी श्रद्धांजलि। विपक्ष हा उठाईस राम मंदिर दान चोरी के मामला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग हा राज्य के 5 नवा सरकारी मेडिकल कॉलेज ला दीस स्वीकृति। और प्रदेश में किशोरी मनला सर्वाइकल कैंसर ले बचाए खातिर आज ले विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू। आप समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र आज ले शुरू हो गए है। 17 जुलाई तक चलैया ये सत्र के दौरान कुल 5 ठन बैठक होगी। सत्र के पहले दिन आज सदन में सबले पहली छत्तीसगढ़ के जाने माने पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई ला श्रद्धांजलि देगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत संग्रह, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य मनहा स्वर्गीय तीजनबाई के योगदान ला सुरता करिन। मुख्यमंत्री हा कहिन कि डॉक्टर तीजनबाई के निधन ले छत्तीसगढ़ हा अपन लोक संस्कृति के एक ठन अनमोल रतन ला गंवा दे हवय। उंखर जाए ले कला और सांस्कृतिक जगत ला अपूर्णीय क्षति होय हे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राम मंदिर के दान के चोरी के मामला जोर शोर ले उठीस। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हा ये मुद्दा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम ले चर्चा कराए के मांग करीस। जिला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हा अग्राह्य कर दिन। एकर बाद विपक्षी सदस्य मन हा शोर शराबा शुरू कर दिन। हंगामा के बीच थोड़कुन देर बाद सदन के कार्यवाही ला स्थगित कर देगीस। दोबारा सदन के कार्यवाही शुरू होते साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होइस। एकर बाद अध्यक्ष हा सदन के कार्यवाही ला काली तक बर स्थगित कर दिन। उन्हें प्रश्नकाल में आज भाजपा विधायक लता उसेंडिया कोंडागांव के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में BEd और DEd पाठ्यक्रम नहीं चलाए के खाली पद में भर्ती और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काम के मामला ला उठाइन। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा हा बतायन कि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे गई हवे और भर्ती ले जुड़े कोनो भी प्रकार के शिकायत नहीं मिले है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर हा घलो प्रदेश में 4 बछर के BEd और DEd पाठ्यक्रम शुरू करे के दिशा में सरकार के तैयारी के बारे में पूछिन। एमा उच्च शिक्षा मंत्री हा स्वीकार करिन कि प्रदेश के कतकुन महाविद्यालय जरूरी मानक के अनुसार नहीं है। राज्य में नवा शिक्षा नीति के अनुसार 4 बछर के पाठ्यक्रम लागू करे के प्रक्रिया बनाए बर एक ठन टास्क फोर्स के गठन करेगी है। ऐसने प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधान में गांव के बंदोबस्त के मामला उठिस। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हां कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव के सवाल के जवाब में बताइन कि प्रदेश में 7

0: 146 गांव के सर्वेक्षण नहीं हुए हैं, जेमा ले 371 गांव में सर्वेक्षण चलत है, उन्हें 375 गांव में सर्वेक्षण नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC डहर ले प्रदेश के गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में 50-50 MBBS सीट वाले 5 नवा शासकीय मेडिकल कॉलेज के स्थापना पर चालू शैक्षणिक सत्र ले मंजूरी दे देगी हवै। एक संग प्रदेश में कुल 250 नवा MBBS सीट के विस्तार होही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है ये उपलब्धि ला प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के ऐतिहासिक पड़ाव किहिन। ओमन किहिन की प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी और आकांक्षी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के स्थापना ले स्थानीय युवा मन ला अपने राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के ज्यादा मौका मिली। संगे संग विशेषज्ञ डॉक्टर मन के संख्या बाढ़ी और क्षेत्रीय स्तर में स्वास्थ्य सेवा के गुणवत्ता में घलो सुधार आही। प्रदेश में किशोरी मंडला सर्वाइकल कैंसर ले बचाए बर आज ले विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू हो गए हैं। एमा 14 बच्चर के उम्र के सबो पात्र नोनी मंडला स्वास्थ्य विभाग दाहर ले निःशुल्क जीवन रक्षक HPV टीका लगाए जावत है। यही कड़ी में धमतरी जिला में घलो नोनी मंडला टीका लगाए बर स्वास्थ्य विभाग दाहर ले स्कूल ले स्वास्थ्य केंद्र तक तैयारी करेगे हवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ला छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्पकृति भेंट करिन। एखरले बस्तर के पारंपरिक जनजातीय कला ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर मा नवा पहचान मिले हे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एला राज्य के समृद्ध जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प पर सम्मान बताइन है। ढोकरा कला हा विश्व के सबले जुन्ना धातु शिल्प परंपरा के माने जाते। एला मोम के सांचा ले ढलाई करके विशेष तकनीक ले बनाए जाते। भारत हा कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन में श्रद्धांजलि देवत आज एक दिन के राष्ट्रीय शोक घोषित करे है। शोक दिवस के दौरान देशभर में वो सबो भवन में राष्ट्रीय ध्वज हा आधा झुके रही, जिहां नियमित रूप ले राष्ट्रीय ध्वज ला फहराए जाते। आज कोनो भी आधिकारिक मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होही। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भू संपत्ति के सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करे के संगे संग भूमि स्वामी मंडला उंखर भूमि और मकान के मालिकाना हक प्रदान करे बर राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान चलाए जावत थे। एमा राजस्व विभाग हा प्रदेश में कुल 20,551 राजस्व ग्राम में 19,805 गांव के विस्तृत सर्वेक्षण के कामला पूरा कर ले हवै। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होए ले भूमि ले जुड़े आपसी विवाद और मुकदमा में कमी आही। उन्हें किसान मनला बैंक ले ऋण लेबर, फसल बीमा और शासकीय योजना के फायदा लेमा घलो आसानी होही। नगरीय प्रशासन विभाग हा प्रदेश के सबो 194 नगरीय निकाय ला आने आने मद मा करीबन 58,43,00,000 रुपया दे हावे। उहें प्रदेश के 14 नगर निगम ला कुल 27,82,00,000 रुपया के राशि जारी करे गए है और 56 नगर पालिका ला कुल 18,71,00,000 रुपया और 124 नगर पंचायत ला 11,89,00,000 रुपया दे गए हावे। दक्षिण अफ्रीका में हुए विश्व स्तरीय एशिया पैसिफिक अफ्रीकन अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई के खिलाड़ी अमान शुक्ला हा क्लासिक स्पर्धा के 120 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीते हवें। अमान शुक्ला हा एकर पहली प्रतियोगिता के इक्विप्ड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते रहिन। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जीआरपी हा करीबन 55 किलो गांजा के संग दू झन महिला के संग्रह चार आरोपी मन ला गिरफ्तार करे हे। आरोपी मन हा ये गांजा ला मध्य प्रदेश के रीवा लेगत रहिन। आरोपी मन तीर ले जब्त गांजा के कीमत 27 लाख रुपया बताया जावत हे। उन्हें रायपुर के कमिश्नरेट पुलिस हा टिकरापारा थाना क्षेत्र ले 46 किलो गांजा जब्त करे हे, जेखर कीमत 29 लाख रुपया बताए गए हवे। ये मामला में एक झन दंपत्ति संग्रह पांच झन आरोपी मंडला गिरफ्तार करेगी हवे। अब थोरकुन समाचार सारमा। राज्य सरकार हा जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ लाहौद मार्ग के डोंगा कोहरौद बस्ती में करीबन 4 किलोमीटर सड़क बनाए के काम पर 6 करोड़ 5 लाख रुपया मंजूर करे हे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चालू खरीफ बछर पर फसल बीमा कराए के आखिरी तारीख 31 जुलाई तय करेगे हे। किसान मन हा जन सेवा केंद्र के माध्यम ले फसल बीमा करा सकत हे। आऊ कोरबा वन मंडल के करतला रेंज के चोर भट्टी जंगल में 9 हाथी के दल घूमत है। सूचना मिले में वन विभाग के टीम हा मौका में पहुंच के सरलग निगरानी करत है। उन्हें तीर्थखार के क्षेत्र में मुनादी करा के लोगन ला सतर्क करे जावत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र शुरू। सदन में प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई ला देगी श्रद्धांजलि। विपक्ष हा उठाई राम मंदिर दान चोरी के मामला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग हा राज्य के पांच नवा सरकारी मेडिकल कॉलेज ला दी स्वीकृति। और प्रदेश में किशोरी मनला सर्वाइकल कैंसर ले बचाए खातिर आज ले विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 हुए हैं। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् नागरिकता निर्णयः उतवा विदेशित्व घोषणा निष्पक्षया विधिसम्मतया युक्तियुतया च प्रक्रियया एव भवेत्। सममेव न्यायालयेन 27 याचिकाकर्तॄणां विदेशित्वं समर्थनयुतः गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य निर्णयः अपि निरस्तः। सर्वोच्चन्यायालयेन अयोध्यायाः रामजन्मभूमिमन्दिरस्य दानविषये आरोपितदुरुपयोगस्य अन्वेषणरताय विशेषान्वेषणदलाय अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडु राज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखण्ड राज्यस्य श्रमिकानां प्रकरणस्य संज्ञानं गृहीतवती तथा च शीघ्र कार्य संपादनाय निर्देशान् प्रदत्तवती। भारत जापान देशयोः मध्ये अद्य प्रचलिते प्रादेशिक वैश्विक सुरक्षा परिदृश्ये व्यापक विमर्शः अभवत्। अपि च टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यानिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य निर्णीतं यत् कस्यचित् व्यक्तेः नागरिकता निर्णयः अथवा तस्य विदेशित्वस्य घोषणा निष्पक्ष विधिसम्मत युक्तियुत प्रक्रियया एव भवेत्। सर्वोच्च न्यायालये असमराज्यस्य विदेशी न्यायाधिकरणैः विदेशिनः इति घोषितानां 27 जनानां याचिकानां श्रवणम् अभवत्। न्यायालयेन गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य सः निर्णयः निरस्तः, येन एते 27 याचिकाकर्तारः विदेशिनः इति निर्णयः समर्थितः आसीत्। विक्रमनाथ संदीप मेहता इत्येताभ्यां न्यायमूर्तिभ्यां उक्तं यत् ये भारतीय नागरिकतायाः अयोग्याः सन्ति ते मिथ्या प्रतिपादनैः न्याय प्रक्रियायाः दुरुपयोगेन उतवा प्रक्रिया विलंबस्य लाभम् उपयुज्य भारतीय नागरिकतां न प्राप्नुयुः। एतस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यस्य न्यायोचितं महत्वपूर्णं च कर्तव्यमस्ति। तथापि न्यायपीठेन विधिसम्मत प्रक्रियायाः पालनस्य आवश्यकता पुनः प्रतिपादिता। न्यायपीठेन निर्देशः प्रदत्तः यत् यावत् विदेशी न्यायाधिकरणैः एतेषां प्रकरणानां पुनः श्रवणं न क्रियते

0: सुगम संगीत में अभी आप ललिता शर्मा, चंदना सेन और साथियों को सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने उठाया राम मंदिर दान चोरी का मामला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्रदेश के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए चालू शैक्षणिक सत्र से कुल 250 सीटों की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्पकृति भेंट की। और प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए आज से विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह शुरू हो गया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज सदन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जानी मानी पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने स्वर्गीय तीजन बाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कला के क्षेत्र में उनके योगदान योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर तीजनबाई के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोक संस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनके जाने से कला और सांस्कृतिक जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राम मंदिर के दान की चोरी का मामला जोर शोर से उठा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अग्राह्य कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं प्रश्नकाल में आज भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बीएड और डीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने, रिक्त पदों पर भर्ती और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मामला उठाया। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और भर्ती से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नकाल के दौरान ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी प्रदेश में 4 वर्षीय बीएड और डीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में सरकार की तैयारियों के बारे में पूछा। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रदेश के कई महाविद्यालय आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं हैं। राज्य में नई शिक्षा नीति के अनुरूप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसी तरह प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत गांवों के बंदोबस्त का मामला उठा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव के सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में 746 गांव असर्वेक्षित हैं, जिनमें से 371 गांव में सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है, वहीं 375 ग्रामों में सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक और कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। वहीं उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट मीडिया से संतराम साहू तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संयुक्त रूप से सौरभ परिहार और राजेश राज का चयन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज सदन में इसकी घोषणा की। चयनित उत्कृष्ट विधायकों और उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारों को आगामी 15 जुलाई को विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमन डे का सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC द्वारा प्रदेश के गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में 50-50 MBBS सीटों वाले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए चालू शैक्षणिक सत्र से स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 250 नई MBBS सीटों का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास का ऐतिहासिक पड़ाव बताया।
5: छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव और खुशी का अवसर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के द्वारा MBBS सीट वाले 5 मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे प्रदेश में एक साथ 250 MBBS की सीटें जुड़ रही हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी और आकांक्षी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को छत्तीसगढ़ के बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्पकृति भेंट की है। इससे बस्तर की पारंपरिक जनजाति कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य की समृद्ध जनजाति संस्कृति और पारंपरिक शिल्प के लिए सम्मान बताया है। ढोकरा कला विश्व की सबसे पुरानी धातु शिल्प परंपराओं में से एक मानी जाती है। इसे मोम के सांचे से ढलाई की विशेष तकनीक से बनाया जाता है। प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए आज से विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू हो गया है। इसके तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क जीवन रक्षक HPV टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में भी पात्र बालिकाओं को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक तैयारियां की गई हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि समय पर लगाया गया HPV टीका इस गंभीर कैंसर से बचाव का सबसे सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
13: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में बंद ऐसे लोगों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण और रिहाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिनके खिलाफ कोई गंभीर जनहानि का मामला दर्ज नहीं है। आज बस्तर क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध लोगों के परिजनों और नक्सल पीड़ितों से विधानसभा परिसर में मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध लोगों के प्रकरणों की जल्दी और न्यायसंगत समीक्षा और सभी के जल्द रिहाई के लिए कार्य कर रही है तथा प्रत्येक पात्र मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में लगभग 58,43,00,000 रुपए आवंटित किए हैं। वहीं प्रदेश के 14 नगर निगमों को कुल 27,82,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है जबकि 56 नगर पालिकाओं को कुल 18,71,00,000 रुपए तथा 124 नगर पंचायतों को 11,89,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विश्व स्तरीय एशिया पैसिफिक अफ्रीकन अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई के खिलाड़ी अमान शुक्ला ने क्लासिक स्पर्धा के 120 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। अमान शुक्ला ने इससे पहले प्रतियोगिता की इक्विप्ड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर GRP ने करीब 55 किलो गांजा के साथ दो महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ये गांजा मध्य प्रदेश के रीवा ले जा रहे थे। आरोपियों के पास से जब्त गांजे की कीमत 27,00,000 रुपए से अधिक की बताई गई है। वहीं रायपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र से 46 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत 29,00,000 रुपए आकी गई है। इस मामले में एक दंपत्ति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का मुख्य केंद्र उत्तरी छत्तीसगढ़ रहेगा। मौसम विभाग ने एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 258 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। ये इस अवधि में होने वाली औसत वर्षा का 82% है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सूरजपुर जिले की शासकीय शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लंबित आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए संकुलवार विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से 3,000 से अधिक विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू खरीफ वर्ष के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। अऋणी कृषक जन सेवा केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। और कोरबा वन मंडल के करतला रेंज के चोरभट्टी जंगल में 9 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार निगरानी कर रही है। वहीं आसपास के गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने उठाया राम मंदिर दान चोरी का मामला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्रदेश के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए चालू शैक्षणिक सत्र से कुल 250 सीटों की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्पकृति भेंट की। और प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए आज से विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ?
2: एडमिशन कराने।
4: खाता हुआ एक्टिव।
14: आरबीआई कहता है
15: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
16: ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 7 बजे है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म हाथी मेरे साथी में मोहम्मद रफी को, आनंद बख्शी का लिखा गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म हाथी मेरे साथी में अभी आप मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म तीसरी कसम में मुकेश को, गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म तीसरी कसम का गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं फिल्म हीर रांझा में मोहम्मद रफ़ी को कैफी आजमे का लिखा गीत और संगीत मदन मोहन का।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।
1: सतीश भाई देख, हमारे गांव गवई में या खेती किसानी के जौन साधन है, खास करके पानी है, तरिया है, नहर है, नरवा है, ये मन मा हमार खेती किसानी के संग हमार रोज दिन की जो निस्तारी है, जरूरत है, वो पूरा होते
2: दैनिक जीवन के हमार जन काम है भाई, तेन है ओखर से जरूरत पड़ते। सही कहे रोशन भाई। और तरिया हुआ या गांव के ये आसपास जो जतका जलाशय है, खासकर हम तरिया कहन, ओमन हमार बहुत कन काम है, जैसे व्यवसाय हवे, रोजगार है, बहुत अकन साधन है, ये मन एकरे ले बनते। और का कह सकथन कि जैसे पानी ल देख के बसाहट होते, काबर पानी ले जिनगानी भी कह जाते, और पानी ले ही कृषि उद्योग खाद्यान्न सबो चीज कच्चा माल कृषि ले होना है। तो पानी जिहा जिहा रही थे उही मेरे आदमी मन का बसेरा और बसाहट होत जाते। हम पुरातन हम देखा थन, जब देखा थन तो ऐसा होते,
1: यानी कि पानी है जिनगानी आए। बिल्कुल सही कहे सतीश भाई। आज हम देखथन कि गली खोर मरमा पानी बहावत रिथे, साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहे, स्वच्छता के कमी देखम में आते। साधन सुविधा तो जरूरी है, फिर साफ सफाई के संग संरक्षण और बचाना घला उतके जरूरी है। आज अगर हम कोनो भी साधन ला या सुविधा ला नहीं बचाबो ता हमार भविष्य दम है, ता मजबूत नहीं रहा है।
2: तो हाँ, सही कहा था। सबले बड़े तो समस्या आज देखन कि ये तालाब के पूरा गांव के जने निस्तारी उही मल होते है ना। जैसे हम छोटे छोटे काम करत हन, घर बार उठावत हन, गाय गरु है ओला धोवा था बन, ये सब वो पानी चले होते। खेती किसानी करना है पानी च में होते। अब पहली गांव बस्ती में देखन तो अब तो आजकल पक्की घर आ गए। पहली का हुआ है, गर्मी दिन रहा तो घर बनावे तो कांवर मन में लावा जाए पानी, डबरा ढोड़गा या तरिया रहा है ड्राम मन में भर भर के, तो पानी ले ही होते सब चीज़ है। और खेती किसानी के तो खैर काम उकर आधार है, तो ये सब मिला करके हम एकर ऊपर पानी पर ही निर्भर होथन, तो हमला बचाना चाहिए।
1: और देख सतीश भाई, जैसे तरिया रहा है आ ओकर तीर में तरिया के नीचे जो उन्हें खेत रहा है ना, तो खार के नाम घला रख दे होती है ना।
2: हाँ हाँ,
1: इस तरिया खाले खार। अब

0: कहन के जौन हमार खेती होबे ये कहन के धान प्रमुख खेती है त ओ मन है जौन है तरिया के चूहरी पानी जौन है ना त ओ पूरा फसल के अवस्था है गुजर जाए।
1: ते बने कहा था भाई बहुत सुंदर याद दिला चूहरी पानी या के जैसे ला अपसरण की थाना सीपेज की थाना आजकल अंग्रेजी में वही अब उतके पानी में हमर के वो कृषि है समर जावे तरिया तरिया खाले मने आदमी ला एक यह रहा है कि चल मोर तरिया खाले में डोली हावे तो हम पानी की किसी कोनो भी किस्म के समस्या नहीं हो ऐसे मन में एक उमंग रहा है किसान।
0: हाँ हाँ हाँ फिर देख सतीश भाई आप देखथन वही तरिया मन के स्थिति जौन है त बिल्कुल एक आहान कि अब घरों घर जौन है तो नल आगे है बोरिंग आगे है ना और ये नल जल जौन है तो घरों घर में हो गए ता ये तरिया और नरवा है जौन है ना भाई एक ए डहान ध्यान बहुत कम देते हैं।
1: काहे पहली ही प्राचीन हमर समय में यही मर रहा है हमर पुरखा भले ही मर रहा है अब नवा नवा जब तकनीक आवा था भाई तो ये डार हम छोड़ा जाथन और छोड़ा जाथन तो कभू कभू कई जगह ऐसे देखने मिलते कि बने छोड़ थन माने ओ डार के साफ सफाई ओकर आसपास के सुरक्षा पर्यावरण की सुरक्षा या सुख दुख में जैसे ओकर जरूरत पड़ते इला हम भुला जाथन तो यू है बनो बने बात नो
0: और सतीश भाई देखे जैसे तालाब मनला तालाब के तालाब है जैसे टिप टिप ले भरे हैं पानी है ना तो जो आस पास के बोर है ना तो वो हा बने उकर जल स्रोत हा बने
1: बढ़े रहते ऊपर स्तरित
0: है ना आओ संग में नमी बने रहते
1: बने रहते हाँ हाँ
0: लेकिन आज जो है तो हमन हा इला ध्यान देना बहुते कम कर दे हैं तरिया मन हा पटावा थे है ना कूड़ा करकट के जो है तो वो एक जगह बन गए हैं तो इला हमला ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगू गोड बात करवो सुनथने संदेश।
2: कॉलेज की फीस ज्यादा है
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री
3: चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने
5: खाता हुआ एक्टिव
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन, फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
3: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
4: सतीश भाई, हम अंतरिया के साफ सफाई की बात करत रहे,
5: हाँ,
4: है ना।
5: हाँ।
4: देखे आज जैसे अब बरसात आ गई है ना, और तरिया मनमा ओकर पार मनमा दत मन के चीरी है, साबुन के जो कागज है, निर्मा के झिल्ली है, ये मन हा सब परे रिथे, कूड़ा करकट मन हा परे रिथे, और पानी जब गिरथे तो वो सबो हा बोहा के जो है
5: तरिया में जाते, पानी में जाते
4: है नहीं। तो तरिया में जो है ये सब हा पटावत रिथे, तो उनका ओकर जो पानी है वो दूषित होते, इला हमला ध्यान देना बहुत जरूरी है। खास करके जैसे स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत है ना, अवैया बरसात ले पहली जो है तो ये सब तरिया है ना, सार्वजनिक जगह है, इमला साफ सफाई करके ही रखना चाहिए, जेकर ले जो है दुष्परिणाम जो है तो गाँवला भुगतेल नहीं पड़े।
5: और ऐसा में तालाब है, स्वच्छता के डर हम ध्यान देना चाहिए। और बरसात आए है तो बरसात आए के पहली हम ला चीरी है वाला जला देवन, काबर गर्मी के दिन में खटखट ले सुखा देते वह। तो तालाब के साफ सफाई देख रेख के संग पानी के स्वच्छता डहर घलो ध्यान देना चाहिए, काबर की कतको कन तरिया नंदिया रहते वो तीर में कहूँ कूड़ा करकट या आनी बानी के कई अवशिष्ट जो चीज रख देस, कुछ जैसे चीरी वगैरह है ना, तो का होते वही में जाते हैं, उनकर से नान नान जो कृमि वाला बढ़ावा देते जो नहावे या मुँह में जाते तो

0: अच्छा नहीं हुआ है
1: और देखे सतीश भाई कि देखियो भी कई गांव के तरियक पानी जो है अतेक गंदा रिथे आ गंदा रहे के संग ओमन नान नान कीड़ा मर रहे थे, है ना। ता ओला देखबे ना तो वो बिल्कुल ले नहायक मन नहीं लगे, है
0: हाँ
1: ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ऐसने बहुत अकन गांव मन के तरियक जोन व्यवस्था है वह बने ढंग ने नहीं रहा है। संगमा व्यवस्था के संग का होते कि पानी के जो निकासी है वो बहुत दिले पानी भरा है, उसका निकासी नहीं हो तो वो पानी है जरूर खराब हो जाए,
0: खराब होते
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: वो काहे कहे जाते ना कि चलती पानी तो एक बार शुद्ध में आ जाते। अब चूंकि तलतरिया अब स्थिर हब है तो स्थिर पानी है तो ओकर बार हम लोग थोकन देख रेख थोकन तगड़ा करना चाहिए। अब जैसे कहा था ना तो पानी के जो निकासी के बहुत जरूरी है भाई। पानी कभू कभू ज़्यादा खादा खादा हो जाते तो हम चाहिए कि चूना
1: हाँ
0: चूना डाल
1: चूना।
0: देना है ना, जेखर थोड़ा स्वच्छता आते या अलग अलग घाट बनावन। कई बार इसे देखे भी मिलते कि वही घाट में मनखे नहावत है और माने कपड़ा लत्ता धोवत है, वही घाट में पशु मलन हलावत
1: हाँ ये
0: है
1: बहुत सही बात
0: ना,
1: कहे सतीश भाई।
0: तो वही है गड़बड़ होते मल इत्यादि कर दीस तो वह ठीक नहीं हुए। तो हमन देखन कि एक अलग पशुधन बर रखन और एक ठन सुघर निर्मल स्वच्छ घाट आदमी बर बनावन और ओढ़ना कपड़ा है तेनुल हम साफ कर सकथन।
1: सतीश भाई तरिया जो उन्हें तो हमारे गांव के गांव मन के ना जो उन्हें बहुत बड़े वह आधार होते, शांति के आधार होते, और हम स्वयं जो उन्हें शीतल शीतल बोलथन,
0: बोलथन
1: सीता शीतला माँ जो उन्हें विराजमान रहथन,
0: हाँ
1: है कि भाई।
0: आध्यात्मिक दृष्टि से लोग हम
1: हाँ,
0: देखथन।
1: और जब हम शीतला माँ जहाँ विराजमान हैं और गंदगी करबो, ओला स्वच्छ नहीं करबो, कूड़ा करकट करबो, तो ओकर परिणाम है अच्छा नहीं हुआ है।
0: सही कहा था भाई, बिल्कुल सही कहा था तेहें।
1: तो सतीश भाई आप सुनथन आज की सलामा, नैनो यूरिया और नैनो डीयूपी का फसलों पर उपयोग विधि एवं लाभ विशेषज्ञ जय श्री राजेश गोले उप महाप्रबंधक विपणन और एकल लेगोड बात करते सतीश यदु।
0: किसान संगवारी हो राम राम। खेती किसानी के बूता ला तो कतको चेत लगा के करथन तभो ले हमर फसल मा कुछु न कुछु कमी हो जाए, जेखर बर हमन खातू दवा के उपयोग करथन। खातू में अधिकतर किसान संगवारी मन है डीएपी और यूरिया के उपयोग करते। फिर आजकल ये डीएपी और यूरिया हा तरल रूप में आ चुके हवे, तो आवाओ जानिन इखर बारे मा सुघर विस्तार ले। विषय हवे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के फसल मा उपयोग विधि और लाभ। हमार स्टूडियो में विशेषज्ञ हवे श्री राजेश कुमार गोले उप महाप्रबंधक विपणन। गोले जी राम राम।
2: राम राम किसान संगवारियों,
0: और बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आप मन के।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गोले जी आप मन से आज सबसे पहले हम ये जानना चाहबो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का होते और यह कौन कौन से रूप में मिलते तेला बताते हो।
2: नैनो यूरिया नैनो डीएपी ये दानेदार खाद का नया वर्जन है, नया संस्करण है। जो दानेदार खाद बोरी 50 किलो बोरी दानेदार और 50 किलो अब तो 45 किलो आ रहा है यूरिया, उसी को जो है ये सूक्ष्म रूप में नैनो पार्टिकल के रूप में इसको परिवर्तन करके जो है बॉटल में पैक किया गया है। और ये जो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया ये रासायनिक खाद का जो खास तौर से 30 से 40 दिन बाद जो टॉप ड्रेस करते हैं खेत में खड़ी फसल में जो खाद देते हैं उसको रिप्लेसमेंट के लिए लाया गया है। दानेदार खाद का उपयोग आधा करना है और बाकी की जो टॉप ड्रेसिंग होती है खड़ी फसल में 2-3 बार यूरिया 1-2 बार डीएपी डालते हैं किसान भाई, उसको जो है दानेदार ना डालकर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से पूर्ति करना है।
0: हम दूसरी प्रश्न ये जानना चाहूँ कि नैनो यूरिया नैनो डीएपी समान यूरिया डीएपी ये दोनों में का अंतर मिलते कत अंतर हम देखे मिलते एला बताते हमारे किसान संगवारी मल।
2: सबसे जो बड़ा अंतर यह है कि जो दानेदार यूरिया है और दानेदार डीएपी है, इसको एक तो किसान को बोरी के रूप में होता है उसको लाने ले जाने में उसको ट्रैक्टर का या कोई गाड़ी घोड़े का उपयोग करना पड़ता है, जबकि नैनो यूरिया नैनो डीएपी बहुत सूक्ष्म रूप में पार्टिकल साइज एक आधा लीटर नैनो यूरिया लगभग 1 बोरी यूरिया के तुल्य होता है। और इसी प्रकार से एक नैनो डीएपी की जो बॉटल है 500 ml आधा लीटर की वो 1 बोरी डीएपी के बराबर काम करती है। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपलब्धि है कि जो हमको बोरी वाला खाद है उसको इतनी बड़ी मात्रा में न ले जाके किसान भाई उसको अपने झोले में रखकर जेब में रख के ले जा सकते हैं। दूसरा ये जो नैनो इसके अंदर पार्टिकल है, जैसे आप देखते होंगे कि आज से सन 1982-83 में टीवी बड़ा लंबा चौड़ा टीवी
0: बड़ा
2: आता
0: आता था
2: था, अब वो नैनो टेक्नोलॉजी से किसान भाई देखते होंगे कि जो एंड्रॉइड फोन है वो भी एक टीवी हो गया है। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी संभव हुआ है कि उसके पार्ट्स को छोटा कर दिया गया। इसी तरीके से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया में जो दानेदार डीएपी और दानेदार यूरिया है उसका पार्टिकल जो 2 से 2.5 mm का होता है उसको छोटा करके 50 नैनोमीटर का कर दिया गया, इस कारण वो बॉटल में आ गया है।
0: मतलब एक किफायती हो गया कि एक जगह से दूसरा जगह ले जाना है तो बहुत आसानी से हम ले सकते हैं कैरी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल
0: ये बहुत हमारे किसान संघ वाली मतलब सहयोग हो गए।

0: आगू हम ये जानना चाहबो कि एकर उपयोग विधि और लाभ के बारे में बताते हो किसान मतलब कि कैसे कैसे एकर उपयोग करना चाहिए।
1: सबसे पहले जहां हमारे यहाँ मुख्य फसल धान है, तो धान के अंदर इसका जो नैनो डीएपी का सर्वप्रथम किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो नैनो डीएपी से बीज उपचार अवश्य करें, और नैनो डीएपी से बीज उपचार करने के बाद उसको खेत में बोएं। और नैनो डीएपी से जो बीज उपचार है बहुत सरल है, आपका एक एकड़ बीज में जो भी मात्रा आपको बीज की लगती है, कोई किसान भाई 30 किलो लेते हैं, कोई 40 किलो लेते हैं, कोई 50 किलो लेते हैं, तो जितनी मात्रा भी आप अपने एक एकड़ खेत में धान बीज का लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप आधी बॉटल मतलब जो आधा लीटर 500 ml की जो 500 mg की नैनो डीएपी की बॉटल आती है उसमें से 250 ml या आधी बॉटल को 2 से 3 लीटर पानी में अलग से मिलाकर घोल बनाएं, और उस घोल से आपके एक एकड़ बीज को जो है लेपित करें, उसको जो घोल का पानी है उस घोल को आप छिड़कें और बीज पर इस तरीके से उसको चिपड़ दें कि हर बीज पर वो समान रूप से फैल जाए। उसके बाद 20 मिनट उसको छाया में सुखाकर आप उसको बो सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप रोपा उपचार करना चाहते हैं, तो रोपा उपचार के लिए आपको वही 5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाएं। उसके लिए किसान भाई ये करे कि जहां पर वो थरा लगाते हैं उस थरा के पास में एक 50 लीटर पानी के लिए जमीन में गड्ढा बना लें, और उस गड्ढे में तालपत्री या जो अपनी मोटी पन्नी आती है वाटर प्रूफिंग के लिए, वो पन्नी उसमें बिछा के उसमें 50 लीटर पानी डाल दें, और उसके अंदर आधी बॉटल मतलब 250 ml नैनो डीएपी डालकर, और जो थरा आप उखाड़ते जा रहे हैं उसकी जड़ को, पूरे पौधे को नहीं डुबोना है किसान भाइयों, केवल उसकी जड़ को 20 से 25 मिनट आप डुबोएं और उसके बाद उसको आप खेत में लगाएं। ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका, किसान भाई हमारे लाई चोपा करते हैं, तो लाई चोपा में जो रात भर 12 घंटे डुबो के करते हैं, तो उस डुबोने के बजाय उसको 40 किलो बीज को 50 लीटर पानी में कोई ड्रम में एक ड्रम के अंदर 50 लीटर पानी लें, और या जितना आप बीज ले रहे हैं उससे 10 लीटर पानी ज्यादा लें। अगर आप 30 किलो बीज ले रहे हैं तो 40 लीटर पानी लें, 50 किलो बीज ले रहे हैं तो 60 लीटर पानी लें, और उस पानी में आधी बोतल नैनो डीएपी का घोल बनाए, मतलब 250 ml उस 50 लीटर पानी में आप डाल दें। अगर मात्रा थोड़ी ज्यादा भी हो जाएगी तो उससे कोई नुकसान नहीं है, और उस घोल के अंदर आप बीज को, जो एक एकड़ का बीज है, उसको रात भर आप डुबोएं और अगले दिन उसको निकाल कर और सुखा कर खेत में आप बो सकते हैं।
0: तो बहुत सुघर जी विधि बता था जी कैसे कैसे का उपयोग करना चाहिए। आगे हम ये जानना चाहबो आप मान ले की पारंपरिक उर्वरक के तुलना में नैनो यूरिया और नैनो जो डीएपी है वो कतेक मात्रा में प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं।
1: ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो डोज है, जो एक बॉटल डीएपी की है 500 ml की, वो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, और नैनो यूरिया की दो बॉटल मतलब आधा आधा लीटर की दो बॉटल उसको एक एकड़ के लिए पर्याप्त। अब इसके डालने की विधि, जैसे मैंने आपको बताया कि नैनो डीएपी की आधी बॉटल से उसको बीज उपचार करना है, और शेष जो आधी बॉटल है उसको 30 से 40 दिन बाद जब आपके खेत में पर्याप्त पत्तियां आ जाएं, क्योंकि नैनो उर्वरकों की एक खासियत है कि ये पत्ती के माध्यम से ही काम करते हैं, ये जमीन में मिट्टी में जाकर जैसे दानेदार उर्वरक काम करते हैं वैसे ये काम नहीं करते हैं। ये पत्तियों के ऊपर जो उनके स्टोमेटा होते हैं जिसको पर्ण छिद्र बोलते हैं, वो पर्ण छिद्र स्टोमेटा से ही पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो जो आधी बॉटल है उसमें एक बॉटल नैनो यूरिया मिलाकर 30 से 40 दिन की फसल, या जब आपकी फसल में पर्याप्त पत्तियां आ जाएं, पर संभवतः 30 से 40 दिन में आ जाती हैं, तो उसको आप जो है 8 गिलास पानी में, या जितने पंप आप डालते हैं, अगर आप 10 पंप डालते हैं तो 10 गिलास पानी, 8 पंप डालते हैं तो 8 गिलास पानी में मिलाकर उस नैनो यूरिया को, एक बॉटल को आप वो 8 गिलास पानी में और आधी बॉटल नैनो डीएपी को 8 गिलास पानी में मिलाए घोल बनाए और प्रति पंप एक एक ग्लास डालें। ये उनको याद रखने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ml बताऊंगा तो किसान भाई भूल जाएंगे। तो वो जितने पंप डालते हैं उतने ग्लास पानी में नैनो यूरिया की एक बॉटल और नैनो डीएपी की आधी बॉटल को मिलाकर घोल बना लें और उसको छिड़कें। और छिड़कने के समय ये ध्यान रखें, आपको जो है सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे के पहले सूर्य की रोशनी धूप तेज ना हो उसके पहले आपको छिड़कना है, और अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर 3:30 बजे के बाद शाम के 7 बजे तक या 6 बजे तक जब तक उजाला रहता है आप छिड़क सकते हैं। किसी भी हालत में दोपहर में 12 से 3 के बीच में नहीं छिड़क,
0: छिड़काव करना है तो सुबह या शाम ही उपयुक्त है कले।
1: बिल्कुल
0: जी जी बहुत बढ़िया। कोनो किसान ला नैनो डीएपी या नैनो यूरिया लेना है तो एकर उपलब्धता कहाँ कहाँ हो सकते, का एकर विक्रय शासन ढाले घलोक होते जिला हम किसान साथी में ले सकते?
1: बिल्कुल, यह अभी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल हो गया है, नैनो यूरिया नैनो डीएपी, और जितनी हमारी सहकारी समितियां हैं पूरे प्रदेश की वहां पर यह आपको आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा इफ्को के जो निजी चैनल है, इफ्को के खुद के स्टोर हैं, वहां भी यह उपलब्ध है, और आप अगर कहीं उपलब्ध नहीं है तो समिति प्रबंधक को आप कह सकते हैं तो वो मार्केट गोदाम से आपको उपलब्ध करा देंगे।
0: जी, अब अगर उर्वरक के उपयोग बढ़ देखें तो फसल में उर्वरक के उपयोग कब कब करना चाहिए, कौन सी स्थिति हवे तो करना चाहिए, वो कैसे कैसे करना चाहिए, ये बताते हैं।
1: जैसा धान में आपको बताया बीज उपचार और उसके बाद 30 से 40 दिन बाद इसका स्प्रे करना है। इसके बाद किसान भाई क्या करते हैं, ये गबोट अवस्था आती है, पोटर पानी अवस्था आती है, उस समय भी डीएपी और यूरिया डालते हैं, तो उस समय भी आप जो है है, एक एकड़ के लिए एक बॉटल नैनो यूरिया को, मतलब पोटर पानी आने के पहले, जो आपने पहला स्प्रे तो आपको 40 दिन में करना है और उसके फिर 25 दिन बाद जब पोटर पानी आने की अवस्था होती है तब आप इस नैनो यूरिया को एक बॉटल को जितने आप पंप डालना चाहते हैं उतने गिलास पानी में मिलाकर घोल बनाएं और उसमें आप आधी बॉटल नैनो डीएपी मिला सकते हैं और उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको दानेदार का जो उपयोग है उस समय बिल्कुल नहीं करना है। दानेदार खाद का डीएपी या नैनो दानेदार डीएपी या दानेदार यूरिया का उपयोग आपको केवल 35 से 40 दिन की अवस्था तक ही करना है। उसके बाद जो भी आपको खाद देना है जैसा मैंने आपको बताया वो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से ही देना है। दूसरी जो फसलें हैं साग भाजी हैं और दूसरी मक्का है, ज्वार है, इसके अंदर भी आप जैसा मैंने बताया बीज उपचार और उसी विधि से आपको 40 दिन के अंतर पर मक्का में या जो भी दलहन तिलहन लगा रहे हैं उसमें भी आप दो बार स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे 30 से 40 दिन बाद, दूसरा स्प्रे उसके 25 दिन बाद या फूल आने के पहले। और जो भी आप साग भाजी लगाते हैं, टमाटर है, मिर्ची है, सबका रोपा उपचार भी आप ठीक वैसे ही करेंगे। 5 ml प्रति लीटर पानी या 50 लीटर पानी में आधी बॉटल नैनो डीएपी का घोल बनाएं और उसके अंदर जो भी आपका रोपा है, बैंगन का रोपा है, मिर्ची का रोपा है, टमाटर का रोपा है, उसकी जड़ को 20 मिनट डुबोने के बाद लगा सकते हैं।
0: जी, कभी कभी ऐसा देखकर घलोक मिलते हैं कि हमन छिड़काव तो कर दें और छिड़काव करे के बाद तुरते पानी गिर गए तो ओकर से समय घलोक खत्म हो जाते हैं, पूरा हमर नुकसान हो जाते हैं, तो एमा कतेक समय तक के वर्षा नहीं होना चाहिए बताते ला।
1: बिल्कुल, ये नैनो यूरिया नैनो डीएपी की जो खास बात यह है कि अगर मान लीजिए पानी नहीं गिरा, मैं आपके उस प्रश्न का जवाब बाद में देता हूं, पर कभी 30-40 दिन की फसल हो गई है और पानी नहीं गिर रहा है उस समय हम किसान भाई जो है दानेदार खाद नहीं दे सकते, परंतु नैनो यूरिया नैनो डीएपी वर्षा नहीं होने की स्थिति में फसल बड़ी हो गई और पानी गायब हो गया है तब भी हम नैनो यूरिया नैनो डीएपी को एक टंकी में 2.5 ढक्कन या जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने पंप आप डाल रहे हैं 8 पंप अगर डाल रहे हैं तो 8 पंप 8 गिलास पानी में एक बॉटल नैनो यूरिया मिलाकर उसको स्प्रे कर सकते हैं। परंतु अगर मौसम अच्छा है और आप दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस दिन बदली हो या पानी गिरने की संभावना हो उस दिन आप बिल्कुल ना दें। आजकल तो मोबाइल पर मौसम की सूचना मिल जाती है कि 3 दिन पानी गिरेगा तो उसको आप अवॉइड करें, और अगर मान लीजिए आप देते भी हैं उसके 5-6 घंटे बाद पानी गिरता है तो आपको दोबारा छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। उसके नैनो यूरिया नैनो डीएपी छिड़कने के बाद कम से कम 5 घंटे पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर आपने सुबह 7 बजे छिड़का है और 3 बजे पानी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1-2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद पानी आता है तो आपको दोबारा छिड़कने की आवश्यकता पड़ेगी।
0: नैनो के में और कौन कौन से नया उत्पाद आते एला बताते?
1: बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। अभी सारे जितने भी हमारे 16-17 तत्व फसल को लगते हैं उसमें जो सूक्ष्म तत्व हैं और जो द्वितीय तत्व हैं तो उसके अंदर अभी जिंक सल्फेट जो किसान भाई डालते हैं, हमारे फसलों में मिट्टी में जिंक की कमी हो गई है खासतौर से धान के अंदर, तो जिंक सल्फेट भी नैनो फॉर्म में आ गया है, नैनो जिंक के रूप में आ गया है और इसी तरीके से नैनो कॉपर आ गया है। ये दो नैनो जिंक और नैनो कॉपर इस साल लॉन्च हो गए हैं और इसमें भी आप किसान भाई जो यूरिया डालते हैं 30 से 40 दिन बाद उसी में आप नैनो जिंक मिला सकते हैं और जो सब्जी वाली फसलें हैं जिनमें की बीमारियां बहुत लगती हैं उसमें आप नैनो कॉपर भी मिला सकते हैं।
0: अच्छा, अब देखें कि नैनो यूरिया के छिड़काव ले का जमीन के उत्पादन क्षमता और पानी में सुधार हो पाई?
1: बहुत ज्यादा सुधार होता है किसान भाइयों। आपको मैं बता दूं कि जो भी हम दानेदार खाद डालते हैं चाहे वो डीएपी हो, यूरिया हो, जिंक सल्फेट हो, पोटाश हो, इसका अधिकतम 25-30% ही फसल उपयोग कर पाती है, बाकी खाद हमारी जमीन में पड़ा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जमीन दिन ब दिन कड़क होती जा रही है और कड़क होने से अंकुरण क्षमता पर असर पड़ रहा है, जिससे किसान भाइयों को धान का बीज जो 40 किलो डालना है उसकी जगह 60 किलो डाल रहे हैं, 70 किलो डाल रहे हैं। अगर आप नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर का उपयोग करते हैं तो आपकी जमीन में खाद की मात्रा आधी हो जाएगी, आधी ही मात्रा आप उपयोग करेंगे वो भी 30 से 40 दिन के पहले, और बाद में जब आप इसको स्प्रे के माध्यम से देंगे तो आप देखेंगे कि अगले 2-3 साल में आपके खेत की मिट्टी जो है नरम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो खाद खेत में पड़ा रहता है किसान भाइयों वो या तो पानी में घुल के हमारे ट्यूबवेल के पानी में मिलता है या नदी के पानी में मिलता है, और जो बच जाता है वो हवा में गैस बनकर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। आप देख रहे हैं आजकल सांस की बीमारियां बहुत हो रही हैं, लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसका कारण ये नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि खेत में खाद से उत्पन्न होकर गैस के रूप में हवा में आता है, और ये जो पानी में जाके नाइट्रेट मिलता है इससे भी हमारी शारीरिक क्षमता पे असर पड़ रहा है। आजकल हमारा स्टेमिना कम हो गया है, हम ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, ज्यादा तेज नहीं भाग सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो है हमारे जो खून के अंदर नाइट्रेट जा रहा है और उस नाइट्रेट जाने से हमारी ऑक्सीजन सोखने की क्षमता जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन प्रभावित होकर मेटाग्लोबिन बन रहा है नाइट्रेट के कारण, और उस कारण हमारी जो क्षमता है शारीरिक क्षमता पे असर पड़ रहा है। तो जब हम दानेदार खाद का उपयोग कम करेंगे किसान भाइयों तो आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से हमारा पानी भी जो है कम प्रदूषित होगा, शुद्ध होगा, हमारी मिट्टी भी जो है कम प्रदूषित होगी।
0: मतलब एक पंथ दो काज, एक हम करें तो हमारा पर्यावरण घलोक हम बचा सकथन और जमीन घलोक नरम हो सकते। बहुत सुंदर बताते आप मन। कभू कभू कहो थे कि हमारे खेती बाड़ी में कीड़ा मकोड़ा बढ़ जाते और उस समय हमला उही बेरन छिड़क छिड़काव घलोक करनी थे नैनो के या कोई भी खातु के, तो का कीटनाशक

0: संग एला मिला करके छिड़काव कर सकता नैनो यूरिया के?
1: बिल्कुल कर सकते हैं किसान भाई, जितने भी कीटनाशक और फफूंद नाशक हैं इन सबको मिलाकर आप जो है छिड़काव कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर जो कॉपर युक्त हैं और सल्फर युक्त जो भी कीटनाशक या फफूंदी नाशक हैं उनको नैनो के साथ नहीं मिला सकते हैं, बाकी सभी को आप मिला सकते हैं। और एक मैं आप एक मेरी जो है सिफारिश थी कि आप जो भी पेस्टिसाइड या जो भी कीटनाशक आप मिलाना चाहते हैं नैनो में तो उसके लिए एक जार टेस्ट कर लें। उसके लिए आप कुछ ना करें, कांच के दो ग्लास या कांच के ना मिले तो डिस्पोजल जो वाइट ग्लास आते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसमें दिखता है आर पार, उसके अंदर दो ग्लास ले लें, आधा आधा उसमें पानी भरें दोनों ग्लास में, एक में आप नैनो यूरिया नैनो डीएपी जो भी आप डाल रहे हैं उसकी दो चार बूंदें डालें और दूसरे ग्लास में जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसकी दो चार बूंदें डालें और फिर उनको घोलने के बाद ये जो दोनों ग्लास का पानी आपस में मिश्रण कर लें। अगर ये पानी जो है 10 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है तो आपको नहीं मिलाना है, अगर उसके अंदर कुछ जम जाता है दही जैसा नहीं मिलाना है, अगर उसमें कुछ बुलबुले उठते हैं तो आपको नहीं मिलाना है, या उसका कलर कोई एकदम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तो उसको नहीं मिलाना है, या ठंडा हो जाता है पकड़ के देखें गर्म हो रहा है तो नहीं मिलाना है, जरूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो नहीं मिलाना है।
0: आगे आप मन ले जाना चाहो का नैनो उर्वरक खरीदे माँ इपको डाल ले कोनो दुर्घटना बीमा मिलते?
1: बिल्कुल, हमारे कई किसान भाइयों को ये मालूम नहीं है और मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने भी मंच दिया। हमारी जो भी नैनो यूरिया की एक बॉटल आधा लीटर की 500 ml की आती है, नैनो डीएपी की आती है, उस पर 10,000 रुपये प्रति बॉटल दुर्घटना बीमा है, संकटहरण बीमा नाम से ही योजना है और अधिकतम जो है ये 20 बॉटल है, 20 बॉटल या तो नैनो यूरिया या 20 बॉटल नैनो डीएपी या दोनों मिला के 20 बॉटल है, तो 2,00,000 रुपए तक का ये बीमा है और ये एक्सीडेंटल है किसान भाइयों, इसमें सामान्य मृत्यु पे ये नहीं मिलेगा, हार्ट अटैक पे नहीं मिलेगा, कोई बीमारी से मृत्यु होती उस पे नहीं मिलेगा, पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ईश्वर ना करे, बिजली आजकल आप देख रहे हैं बिजली गिरने की बहुत समस्या हो गई, खेतों में बिजली गिरती है, हमारे किसान भाई काम करते हैं है ना, बिजली के तार रहते हैं करंट लग के कई किसान भाई हमारे जिंदगी के जोखिम में डाल देते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, थ्रेशर से हाथ कट जाते हैं, ये दुर्घटनाएं हैं, मतलब ऐसी कोई भी दुर्घटना सड़क दुर्घटना है जिसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट होती है उसमें ये इसका लाभ 10,000 रुपए प्रति बॉटल का आपको मिलेगा। और जो भी परमिट आप सोसाइटी से लेते हैं वो इसकी बीमा पॉलिसी है, या आप किसी प्राइवेट व्यापारी से खरीद रहे हैं जो इफको का रिटेलर है तो उसका जो बिल है वो आप संभाल के रखें, वही उसकी बीमा पॉलिसी है, इसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है, सारा प्रीमियम इफको देती है।
0: बीजोपचार की दृष्टि देखें तो धान के संग संग और कौन कौन से ऐसा बीज हावे जिला हम बीजोपचार कर सकते हैं एक माध्यम से?
1: जो भी बड़े बीज हैं जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, उन बीजों को आप जो है 5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर उपचारित कर सकते हैं और उस बीज को आप जो है सुखाएं, 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाएं, या अगर आप रोपा उपचार कर रहे हैं तो पानी में 5 ml प्रति लीटर का घोल बनाएं और रोपा को उसमें डुबोएं, और अगर बीज उपचार कर रहे हैं तो 5 ml प्रति किलोग्राम है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, 1 kg पे 5 ml, ये जो बॉटल का ढक्कन है नैनो डीएपी का ये 25 ml का है, यानी ये 5 kg बीज के लिए पर्याप्त, 5 kg चना का बीज उपचारित करना है या 5 kg धान का बीज उपचारित करना है, 5 kg मक्का का बीज उपचारित करना है, तो आप एक ढक्कन को पर्याप्त पानी में मिलाएं और उस पानी के घोल से नैनो डीएपी और पानी के घोल से उस बीज पर लेपन करें, उसको चिपड़ दें और 20 मिनट उसको सुखाने के बाद आप उसको बुआई कर सकते हैं।
0: जी आखिरी हम आप में ले जाना चाहो कि नैनो उत्पाद के उपयोग के दौरान कोई सावधानी होती ओला बताते या हमारा किसान संगवारी मतलब औ का जानकारी दे एक माध्यम से बताते?
1: इसमें सावधानी जो रखना है जैसा मैंने आपको बताया, छिड़कने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे पानी नहीं गिरना चाहिए, एक तो ये सावधानी। दूसरा, जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप हवा की दिशा में ही स्प्रे करें, जैसे आप दूसरे कीटनाशकों में भी करते हैं, हवा की विपरीत दिशा में ना करें, और मास्क लगाएं तो बेहतर होगा, जो कोरोना के समय हम लोग मास्क उपयोग करते थे उस मास्क को पहन लें, बहुत सस्ता आता है 5-5 रुपए का, उसको आप पहन के और हवा की दिशा में ही उसको स्प्रे करें, हवा की विपरीत दिशा में स्प्रे ना करें, और सुबह 6 बजे से लेकर आप जो है 11 बजे तक करें और 3:30 बजे से लेकर शाम तक करें। दिन के अंदर इसलिए नहीं करना है किसान भाइयों कि जो हमारे पौधे होते हैं जो उनकी पत्तियां होती हैं उसका जो स्टोमेटा होता है जो पर्ण छिद्र होते हैं वो दोपहर के समय प्राकृतिक रूप से बंद हो जाए ताकि उसमें वाष्पीकरण होकर पौधा अपना पानी को बचाने के लिए उन पर्ण छिद्रों को स्टोमेटा को बंद कर लेता है, इसलिए अगर आप दोपहर में उसको छिड़केंगे तो वो पौधे के अंदर जा नहीं पाएगा, इसलिए उसको हम दोपहर में नहीं छिड़कने की सलाह देते हैं। और ये जो स्टोमेटा है इनके खुलने बंद होने का समय होता है, जैसे ही धूप बढ़ती है ये बंद हो जाते हैं और 3:30-4 बजे के बाद ये खुलना शुरू हो जाते हैं, तो आपको सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक और 3:30 से लेकर शाम ढलने तक आप स्प्रे कर सकते हैं।
0: श्री राजेश कुमार गोले जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आकर के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के फसल में उपयोग विधि और लाभ ला बहुत सुगर विस्तार हमारे किसान संगवारी मतलब बताओ, एक खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
2: आज की सलामत सुनेन नैनो यूरिया नैनो डीपी का फसलों पर उपयोग विधि एवं लाभ। विशेषज्ञ रहने श्री राजेश कुमार गोले उप महाप्रबंधन विपणन और इनकल ले गोट बात करत रहने सतीश कुमार यदु।
0: ओ संगवारी हो हलो किसान मानी ले संबंधित ये सूचना सुन लो। मंगलवार 14 जुलाई 2026 के प्रसारित होइया हलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय होही नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। विषय में आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होही मनीषा खापरडे विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमन ला फोन कर सकता हो। हमर फोन नंबर हवे 400-3482 400-3483 और तीसरा या टेलीफोन नंबर 400-3484 रायपुर के एसटीडी कोड हवे 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक करे जाहि और ए कार्यक्रम के प्रसारण उही दिन मंगलवार के संझा 7:30 में करे जाहि। हमला आप मन के फोन कॉल की इंतजार रही संगवारी हो। सूचना यही मेरे सिरावत है।
2: सतीश भाई अब सुन लेथन एक ठग गीत जे लगावत है पवन चंद्राकर और साथी मन।

0: रज रजा के गिर जरे पानी। अभी ये सुघर लोकगीत सुनत रहन जेला स्वर देवत रही साहब पवन चंद्राकर और साथी में।
1: सतीश भाई देख कुछ दिन पहली पानी जो उन्हें बने गिरीस है ना अब चार चारो डहान चिखला होल धल्लीस पानी भराल धल्लीस फिर रुक गए
0: फिर हो गए भाई फिर हाँ वो समय तो ऐसे हो गए कि बियासी पानी दे दी उरला भागत रही से
1: हाँ हाँ हाँ कैसे बोबो कैसे जोताई हुई कैसे बीजा डालबो है आप देख ये का होते सतीश भाई जौन है तो दो तीन दिन पानी गिर दिस और फिर घाम कर दिस वो पानी है ना गिरे गिरे मतलब ही नहीं मतलब तो नमी भर मिलती
0: नमी में मिलती
1: है ना और लगातार जब पानी गिरते तो खेती के संग तरिया है कुआ है अपन
0: बोर
1: जल स्तर है वो मन और जो भुइया है जो भाप फेंकते नरमाहट ओहू है शांत होते संगमा पशु धन मन मर चारा मन जागते है नहीं
0: ये सबसे प्रमुख बात है काबर अभी चारा जाम थे जगह जगह देखथन काबर अब जैसे जत के बरसात जैसे बरसात लगते तो खेती बाड़ी जन हावे तेमा तो फसल बोवा जाते तो ओमा पशु धन मन भर जो चारा चरागन के गोचर जिन भूमि हावे तेन ह कम पर जाते तो कोनो कोनो मेरे जन उगे रही थे ना तेमा स्वतंत्र रूप से इसे छोड़बे पशु मन तो चर के खाते तो ये करो एक फायदा है कि पानी गिर थे ना तो सब जगह हरियर हरियर कांदी रही थे एकर उपयोग हम पशुधन भर करते हैं।
1: कई ठाक पेड़ पौधा ऐसे रहते जउन गर्मी में जउन है बिल्कुल मुरझा जाते हैं ये कहा कि वो है ऐसे दिखते कि सूख गए हैं चाहे वो खेत खार के रहा है या हमारे आसपास के पर्यावरण के रहा है या जउन बगीचा है उमन में पेड़ पौधा रहा है ना तो वो जब पानी गिरते ना अच्छा पानी पाते तो थोक बहुत ओकर में जो हरापन रहते जान बाचे रहते तो वो बने
0: फूट के थे।
1: है ना तो क्या कि ये पानी है जो उन्हें मनखे संग खेती किसानी पर्यावरण संग में पशुधन सबो बर जो उन्हें फायदा के
0: संतुलन बन थे
1: हाँ संतुलन बन
0: कोई भी चीज है प्रकृति जिन बनाए हाँ भाई वो अपन समय में अपन बेरा में प्रवेश करते ना तो बहुत सुंदर संतुलन बनाते और कहूँ वही अपन स्थान में अपन बेरा बेरा में नहीं आवे ना तो वही असंतुलित होते और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती।
1: सही बात कहे सतीश भाई और देख अब बेरा हो गए है आज के प्रश्न के है ना तो आज के प्रश्न है दानेदार यूरिया डीपी ला तरल रूप में कतका नैनोमीटर बनाए जाते है ना प्रश्न ले गहूँ बता देथन दानेदार यूरिया डीएपी ला तरल रूप में कतका नैनोमीटर में बनाए जाते और पाछू हफ्ता जो प्रश्न पूछे रहन अश्वगंधा और एलोवीरा के प्रमुख किस्म के नाम बतावा एकर सही उत्तर है जवाहर अश्वगंधा 20 जवाहर अश्वगंधा 134 और AL1 और सही जवाब कौन कौन लिख के भेजे है संगवारी मन तेकर नाम बता दे सतीश भाई।
0: हाँ सही जवाब भेजिए हमर संगवारी मन हवे बठेना पाटन जिला दुर्गले बलकरण वर्मा अंजलि ज्योति वर्मा निधि निखिल वर्मा संजय आशु वर्मा मन गर्रा पार बांधा बाजार जिला राजनांदगांव ले राकेश साहू सुलोचना साहू मानवेंद्र साहू मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामनी वर्मा मन और लोरमी चचिड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा मरावी पुष्पराज मरावी ऋषभ मरावी परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी मसिया खुमेंद्र तुसारणी मसिया मन कांकेर संबलपुर ले हवे फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव तेंदुभाठा मगरलोड जिला धमतरी ले संगवारी मन है उमेंद्र कुमार निषाद देविका पोषण नूतन यशस्वी सुरेंद्र भास्कर किशन निषाद मन आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंघेल नंदनी जंघेल मदनपुर कंवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू और

0: सुघर अपन संगवारी मन हमन ईमेल पठोई, सुघर सुघर सुनथे एकर बार ये सबो संगवारी मन बहुत बहुत बधाई, ऐसने हमर मेर और ईमेल भेजते रहो।
1: सतीश भाई अब जाएक बेरा हो गए, जाएल पहली काली के कार्यक्रम बता देतन। काली हुई फूनिन कार्यक्रम, हलो किसान वाणी, विषय हुई नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन, विशेषज्ञ हुई मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्य कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। तो भाई अब मतलब कार्यक्रम ले छुट्टी देव।
2: किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल, अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह को फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में, गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत सचेत परंपरा का।

बत्ते गोल मीटर चालू। इस फिल्म में अभी आप अरिजीत सिंह को सुन रहे थे। गीत के बोल थे सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत था सचेत परंपरा का। लीजिए अब सुनिए फिल्म साया में कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल को, गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत अनु मलिक का।

क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूं, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं पुष्पा हंस। आइए सुनाएं आपको पुष्पा हंस की स्वर में ये संगीत।

मधुकर राजस्थानी की रचना अभी आप पुष्पा हंस की आवाज में सुन रहे थे। लीजिए सुनिए H.S. परवाना की रचना पुष्पा हंस के स्वर में।

0: सुगम संगीत में अभी आप मुनव्वर खां को सुन रहे थे। पुष्पा हंस को अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली से।
1: के आज के अंक में आप सभी का तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से बर्मिंगम में शुरू होगी। यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया और जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से तोक्यो में शुरू होगा। तो अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड पर 270 रन की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। भारत ने इस मैदान पर खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में एक यादगार जीत दर्ज की।
2: भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत मेजबान इंग्लैंड को 270 रन के बड़े अंतर से पस्त करते हुए एक यादगार जीत दर्ज की है। भारत ने मैच की पहली पारी में 285 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर की 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद पारी आई भारतीय गेंदबाजों की, जिन्होंने इंग्लिश टीम की पूरी बल्लेबाजी को महज 170 रन पर दिया। एमी जॉन्स ने मेजबान टीम के लिए सर्वाधिक 52 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से क्रांति गौड़ 5 विकेट लेते हुए लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट हॉल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। भारत ने पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 115 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद फिर भारत ने अपने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट खोकर 341 रन चढ़ाए। इसके बाद भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी। इस पारी का मुख्य आकर्षण रहा स्तिका भाटिया का शानदार शतक, जिन्होंने 113 रन बनाए। वे लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी। उनके अलावा स्मृति मंधाना ने 70 रन और ऋचा घोष ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से सोफी एक्लेस्टोन ने 5 विकेट निकाले। जीत के लिए 457 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 186 रन पर ढेर हो गई। एमी जोन्स ने 54 और सोफी एक्लेस्टोन के 50 रन के अलावा कोई भी इंग्लिश भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सका। इस पारी में भारत के लिए स्नेह राणा ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि सयाली सदघारे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। शानदार गेंदबाजी के लिए क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। देश विदेश से इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम को बधाइयां मिल रही है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो इस जीत के बाद इस टीम का हर एक खिलाड़ी इस लम्हे को, उस गेंद को अपने दिल में सजो के रखेगा जो शायद आखिरी गेंद थी और जिसने भारत की जीत की पताका पूरे विश्व में लहराई।
3: After 142 years of test match cricket in the men's game, we've witnessed the first ever in the women's. And it has been a comprehensive win by India. They win by 171 runs. They continue their magnificent form in this format against England.
1: शायद इस गूंज ने कुछ धुंधली किया होगा विश्व कप, T20 विश्व कप के पहले ही दौर में बाहर होने के बाद भारतीय महिला टीम की निराशा को। और अब रुक करते हैं भारतीय पुरुष टीम का। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंगम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
4: भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ कल से शुरू हो रही 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए तैयार है। 2020 श्रृंखला में मिली निराशाजनक हार के बाद भारतीय टीम 1 दिवसीय मुकाबलों में हिस्सा बराबर करने के इरादे से उतरेगी। शुभमन गिल की कप्तानी में 1 दिवसीय फॉर्मेट में भारतीय टीम अधिक मजबूत नजर आ रही है। हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से टीम को नई मजबूती मिली है। मध्यक्रम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ईशान किशन

0: और अक्षर पटेल पर होगी। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम में गेंदबाजी को नई ताकत देगी। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार को चुना गया है। स्पिन की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई पर होगी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा भारी है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 110 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 61 में भारत ने और 44 में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है। दो मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि 3 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में भारत की नजर एक दिवसीय श्रृंखला में शानदार जीत दर्ज कर 2020 की हार का हिसाब चुकता करने पर होगी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें होंगी कि किस तरह उस 0-2 और 4-0 की हार को मिटाया जाए, और खेल प्रेमियों की नजरें होंगी कि उनके फेवरेट विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस मैदान पर उतरेंगे, और मैदान पर उतरेंगे भारतीय पेस बैटरी के सबसे घातक खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। तो कह सकते हैं कि एक मजबूत संयोजन जिसमें युवा खिलाड़ी और अनुभवी खिलाड़ी होंगे, और तैयारियों का एक ही रूप होगा और नज़र होगी 2027 के विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को कैसे अंतिम रूप दिया जाए। और अब रुक करते हैं इंग्लैंड का, जहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का समापन हो गया है और यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इटली के इस युवा खिलाड़ी ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव पर 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से शानदार जीत दर्ज की।
2: इटली के यानिक सिनर विंबलडन पुरुष सिंगल्स के नए चैंपियन बन गए हैं। सिनर ने ज़ेरेव पर लगातार 10वीं जीत दर्ज करते हुए अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम जीता। इसके साथ ही सिनर विंबलडन पुरुष सिंगल्स के खिताब का बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। विंबलडन 2026 के खिताबी मुकाबले का पहला सेट बेहद रोमांचक रहा। सिनर और ज़ेरेव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन ज़ेरेव टाई ब्रेकर में सेट 7-6 से अपने नाम करने में सफल रहे। इसके बाद सिनर ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 7-6 से अपने नाम कर स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। तीसरे सेट में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला, पर सिनर ने 6-3 से सेट जीत लिया। चौथे सेट में सिनर ज़ेरेव पर हावी दिखाई दिए और सेट को 6-4 से जीतने के साथ ही विंबलडन 2026 के पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। आइए सुनते हैं इस ऐतिहासिक जीत के बाद नए विजेता सिनर ने क्या कहा।
3: Amazing, Sasha did. I would like to start with you and your whole team and family. You reached one of your goals, your main goals, winning Grand Slam. And you made it happen in Paris today. You were so close. If you play like this, I'm very, very sure you're gonna have this one at home as well. So amazing, keep going. I know another goal is to for you to become number one in the world.
2: वहीं दूसरी तरफ ज़ेरेव ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और अंत तक मुकाबले में लड़ते नजर आए।
4: Well, first of all, Yannick, I don't really like you anymore. To be fair. I lost to you 9 times in a row. No, but first of all, congratulations to Yannick. He showed once again why he's the best player in the world. It was great to share the center court with you on finals weekend. It's a great honor to be here. Unfortunately, I didn't go my way, but congratulations to you first of all.
2: और इस मुकाबले के साथ ही साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन समाप्त हो गया है। अब वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन 24 अगस्त से न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो अब एक ग्रैंड स्लैम समाप्त हुआ और अगले की तैयारी है, लेकिन जिस तरह का खेल इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया, शायद हर दर्शक तालियां बजाते हुए नजर आ रहा था उस समय मैदान पर, और एक अच्छी राइवलरी आने वाले समय के लिए तैयार होती हुई इस टूर्नामेंट में, जहां एक तरफ ज़ेरेव हैं जो जूझते हैं, हर मैच को अंत तक ले जाते हैं, और इसी तरह उन्होंने फ्रेंच ओपन का भी खिताब जीता था, और देखना होगा कि इस साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम का खिताब किस खिलाड़ी के सर सजता है। और अब रुक करते हैं नीरू डांडा का, जिन्होंने इटली के लोनाटो में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विजय कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इस अवसर पर नीरू ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था।
5: मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्पेशल दिन था पूरे इंडियन शूटिंग टीम के लिए और इंडिया के लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। और दूसरा ये था कि हमने एक बैरियर ब्रेक किया है जो आज तक नहीं हुआ था। तो ये चीज मेरे को शुरू से ही लग रही थी कि ये करना है। मैं पिछले 3 बार से फाइनल को मिस कर रही थी, हर एक बार बाहर हो रही थी, कभी शूट ऑफ नहीं, कभी ग्रिड नंबर से बाहर हो रही थी। तो उसको काफी ये बैरियर ब्रेक हुआ तो अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और फीलिंग नेक्स्ट लेवल है।
1: जब नीरू से ये पूछा गया कि इतने हाई प्रेशर मैच से पहले वो कैसा महसूस कर रही थी, तो नीरू का जवाब बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा कि वो मैच से पहले ये मानकर उतरी थी कि वे चैंपियन हैं।
5: प्रेशर तो नहीं होता, आप जहाँ खड़े हो ना वो चैंपियन थे, लेकिन उस दिन तो मैं भी चैंपियन हूँ अगर चैंपियन के साथ खड़ी हूँ। मेरा तो वही मैं

0: था कि मैं चैंपियन हूँ, और मैंने जैसे हमारा अनाउंस होता है लाइन में खड़े होते हैं सभी शूटर्स, तो उस टाइम स्ट्रेटेजी मेंटली ये किया था मैंने, सबसे पहले ये कर दिया था ऐसे लाइन में और फिर विक्ट्री बना दी थी।
1: तो एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह वो मैदान पर उतरी और एक चैंपियन बनकर ही वापस लौटी। और ऐसे ही कुछ चैंपियन लौटे हैं चीन की ओरडोस से। भारत ने इस प्रतियोगिता में एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान कल 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल थे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: चीन के ओरडोस में भारतीय एथलीट अपने शानदार प्रदर्शन से एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में अपनी छाप छोड़ते नजर आए। भारत के लिए आनंद सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 4x400 मीटर के महिला और मिक्स्ड वर्ग में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता। शिवाजी पराशर ने 5000 मीटर और शिवाजी परशुराम ने 10000 मीटर में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 और महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीते। अगर कांस्य पदक की बात की जाए तो शिवम लोहाकरे ने भाला फेंक में, भरतप्रीत सिंह ने चक्का फेंक में, प्रिया ने महिलाओं के चक्का फेंक में, अभय सिंह ने 200 मीटर रेस, शवांगी ने 400 मीटर बाधा दौड़, शकील ने पुरुषों की और भुवनेश्वरी ने महिलाओं की 800 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। प्राची देवकर ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज स्पर्धा में और विनोद सिंह ने 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय टीम 3 स्वर्ण सहित 16 पदकों के साथ प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: खासकर बात अगर आनंद की जाए, जो जेवलिन में भारत की एक नई आस बनकर उभरे इस युवा खिलाड़ी ने अंडर 23 वर्ग में खेलते हुए पहली बार 80 मीटर का बैरियर इस वर्ग में पार किया, तो कह सकते हैं कि जेवलिन का एक बहुत अच्छा फ्यूचर भारत में पनपता हुआ। और इसके साथ ही तमाम खिलाड़ियों ने अपना पर्सनल बेस्ट देते हुए पदक अपने नाम किए हैं। पहले ओडिशा, उसके बाद चीन का ओरडोस, जहां भारतीय खिलाड़ी रोज नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब रुख करते हैं मुक्केबाजी का, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कई और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन आज भी जारी है। अंडर 23 वर्ग में कल 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश किया था, जिसमें से 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाज थे। इनके फाइनल मुकाबले अब खेले जाएंगे, जहां वो स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। और आज अंडर 19 वर्ग के सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं। महिला वर्ग में अब तक 8 महिलाओं खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए प्रवेश कर लिया है, जहां पर वो स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाएंगी। इन खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो अंडर 19 वर्ग में 45 से 50 किलोग्राम वर्ग में गुंजन ने, 51 किलो वर्ग में चंद्रिका पुजारी ने, 54 किलोग्राम वर्ग में जॉयश्री चिरोम, 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची, 60 किलो वर्ग में चाहत, 75 किलो वर्ग में अंशिका, और हैवी वेट कैटेगरी की बात की जाए तो 80 किलोग्राम और उससे अधिक के वर्ग में मेघा ने, और 81 किलोग्राम और उससे अधिक के वर्ग में प्राची टोकस ने फाइनल में जगह बना ली है, जहां पे ये खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले करते नजर आएंगे। अगर पुरुषों के वर्ग की बात की जाए तो लड़कों के सेमीफाइनल मुकाबले इस समय खेले जा रहे हैं जकार्ता में। और इन स्वर्ण पदक और रजत पदक के अलावा 7 खिलाड़ियों ने अंडर 23 वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक भी हासिल किए। और अब मुक्केबाजी के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन का, जहां पर जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है, जहां कई दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर एशिया कप से पहले, एशियन गेम्स से पहले अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे, जिसमें सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे।
3: सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष डबल जोड़ी जापान ओपन में भारत की अगुवाई करेगी। सात्विक कंधे की चोट के कारण जून में इंडोनेशिया ओपन से हट गए थे। पहले दौर में उनका मुकाबला डेनमार्क के डेनियल लुंडगार्ड और मैट्स वेस्टरगार्ड से होगा। सिंगल्स में भारत का दारमदार एक बार फिर लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी पर टिका होगा। इस साल की शुरुआत में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य जापान की कोकी वातानाबे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आयुष को अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड के कुनलावत वीटी डसर्न के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु महिला सिंगल्स में मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से भिड़ेंगी, जबकि उन्नति हुडा अपने पहले मैच में चीनी ताइपे की वांग यू हुसुन का सामना करेंगी। हरिहरन, अमसा करुणन और एमआर अर्जुन पुरुष डबल्स के पहले दौर में चीनी ताइपे की लू झे हुई और यांग पो ह्युसान का सामना करेंगे। ध्रुव कपला और तनिषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और राधविका शिवानी गड्डे

0: की मिक्स डबल जोड़ी भी इस टूर्नामेंट में अपना भाग्य आजमाएंगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक और बैडमिंटन टूर्नामेंट तैयार है, यहाँ से खिलाड़ियों की नज़र होगी कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स जहाँ पे एशियन गेम्स हैं और कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताएं होनी हैं, उसके पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए और तमाम खिलाड़ी जो उन खेलों का हिस्सा होंगे, जैसे सात्विक रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी जो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आए, आयुष शेट्टी पे भी काफ़ी लोगों की नज़रें रहेंगी जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपने खेल से काफ़ी प्रभावित किया है मैदान में और मैदान के बाहर भी लोगों को। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक

0: बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं।

0: हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
1: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
2: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए अमित त्रिवेदी को। फिल्म केदारनाथ में गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म लगान में लता मंगेशकर और उदित नारायण को जावेद अख्तर के बोल और संगीत ए आर रहमान का।

लीजिए अब सुनिए कैलाश खेर मीत ब्रो संजान को फिल्म ओ माई गॉड में, गीत के बोल कुमार के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: आकाशवाणी है। 9:30 हुए हैं, पब्लिक स्पीक दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। अच्छा, नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगर पालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
2: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं, जैसे बावलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
1: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हाँ जी, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
3: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
2: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
3: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार

0: अपना योगदान देना दे सकता है सर।
1: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग, आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे कैसे
2: हमारा संपर्क इनसे टूट गया? हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
1: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में है। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी बढ़ता एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट, एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके, ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए, ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके?
2: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है, और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर? तो
1: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए।
2: जी,
1: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है, तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित, हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से, जैसे मैंने पहले बताया, नीचे ले जाए, लूज सैंड, ऑफ कोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसे, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूँ, तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूँ तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके, ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं, तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हज़ार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए, जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
2: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
3: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का, जिसे सरकार की तरफ से कुछ, जिसे कैसे अभी घर सुर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
1: अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी, अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब यह है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा,

0: पूछूंगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बनास डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी करीब 500 घर हैं, वहाँ कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है, बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो जी, तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बनासकांठा का एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये भी प्रेरणा,
0: ये प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन,
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूँगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर है, सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए ज़मीन के स्तर पे और ज़मीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया। फिर मैंने सैंड का, सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
1: जी,
0: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा

0: अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, देर इज नो डिफ्रेंसिएशन। लॉन्ग आंसर मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है, वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, आज जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: उसी तरह से भी कर सकते
0: जी
1: हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार रमाकांत जी।
0: नमस्कार
2: रमाकांत
0: जी। नमस्ते।
2: नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड सूख दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
0: रमाकांत जी आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले। सो ये छोटे छोटे तरीकों से, जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश, अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
1: हूँ। भविष्य के लिए निवेश है,
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है। जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
1: हर बूंद कीमती है।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331 07 18 2371 7 11 7 2371 7 10 6 और 2331 4 4 4 4। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
0: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मानसून से पहले एक बार सफाई कर दिए, ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार
1: होए,
0: तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे

0: मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: उसका जो
0: स्तर ऊपर हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे जीएसजेबी जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी जिसको हम 2.0 कहते हैं वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को ख़त्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे वहाँ की जनता ने, वहाँ के क्राउड ने, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, वहाँ की इंडस्ट्री ने, वहाँ के एनजीओज ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं।
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी
1: लोगों की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है
1: जी,
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूँ, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहाँ डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से ये शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी, अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न

0: जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग उससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छा रेस्पॉन्स है। इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कोई संस्थाएं सरकारी जिसके लिए प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली जो चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
1: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं
2: जी,
1: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
2: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
1: एब्सोल्युटली कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
2: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
1: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
2: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
2: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका ही पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण, स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यही समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। आइए सुनते हैं पहला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप हैं समगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य और प्रकाश सेन, मगर लोड से पुनूराम साहू, तेजेश्वरी साहू, राजश्री, राजवीर साहू, सिरमुंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई, राजेंद्र कुमार दामले, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल श्रीवास्तव, दरचूरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी, प्रीतम कुमार साहू, राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, जानकी घनश्याम राम, हरिशंकर प्रजापति, गंज डुंडवारा यूपी से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम हुसना बेगम अंसारी, फूल चंचौली पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर मुलानी, पाठापाट डोंगरगढ़ से राम गोपाल झोल, जयंती ध्रुव, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, गंडई से सुरेश साहू, जयंती बाई साहू, तन्मय साहू, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, निजामाबाद तेलंगाना से शेख अल्लाह बश्क बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, फुलझर घटारानी धाम से योगेश्वर डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान साहू, पांडुका लोहरसी से प्रमोद कुमार पटेल, आदिति पटेल, मल्हार मच्छा से राजकुमार पटेल, श्रीमती पटेल, भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमंदर सिंह चावला, बानी चावला, नेताम टोला मोला मानपुर से नंद कुमार साहू, सेवतीबाई साहू, टेमिन खोमन साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म गुमराह में महेंद्र कपूर को साहिर लुधियानवी का लिखा गीत और संगीत रवि का।

फिल्म गुमराह का गीत अभी आप सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए अगला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, धवलपुर गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांती, धनंजय और सोनाली मिश्रा, भाटापारा से अमृता यादव, पार्वती ईश्वरी, लक्ष्मी यादव, कोरदा लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता, वेद किरण वर्मा, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस दास और सतीश दास वैष्णव, दतरेंगी से भागवत वर्मा, गुलाब दास, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र सोनू, आशीष कपिल साहू, देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार, युवान रजक हाविया, तन्नु रजक, लोरमी चचेड़ी से शंकर गुलाम, संतोषी गुलाम, संजय संध्या गुलाम, पहराईवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर, पिपरिया से नरेश साहू, चंद्र कुमार, लीलाधर ओम कुमार, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, बम्बूडी से बावनकेरा से डिगेश रमाकांत, चंद्रकांत महिलांग, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर नयन पांडे, सौंगा मगरलोड से कोमल सेन, तोशन कुमार, पिंकी रीना सेन, बठेना पाटन से अंजनी वर्मा, बलकरण वर्मा, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म आंखें का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी का लिखा गीत और संगीत रवि का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। देवरी तरपोंगी से कमल साहू, सोनम साहू, नैना नेहल गंगा, शांति साहू, नारी से त्रिवेणी भूपेंद्र जयश, गोरखनाथ कश्यप, परसाटोला से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी खुमेंद्र तुषारनी मसीहा, बाघमुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी गायत्री यशवर्धन देवांगन, हजर नंबर 2 से कमलेश साहू, पायल साहू, जितेंद्र साहू, डोंडी लोहारा बालोद से देव शंकर तामोरिया, डॉक्टर डॉली अजय तुषार तामोरिया, नागरकोरा से झग्गा राम साहू, जामुन देवी, प्रेम और पूजा देवी साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से, पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी योग्यता नितिन दिवाकर, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, लालपुर से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी निम्मी पम्मी ध्रुव, कोटनपाली डोंगरगढ़ से कैलाश कुमार मंडावी, रुपेश कुमार गरिमा मंडावी, भाटापारा से राम गुलाम, नूतम कुमार, बॉबी पूजा सेन, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा अनस और रेहान। आइए सुनते हैं।

आरजू फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। लीजिए सुनिए अगला गीत। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं, खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना और प्रेरणा अग्रवाल, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा, शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, कोटा रायपुर से योग्यता वर्मा, रुचि खुशी ओजल वर्मा, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, अनिल कुमार, मोरज जंघेल, अजीत कुमार, धरदेही सरगांव से चंदूलाल पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार पटवा, सुनीता बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ शौर्य नामदेव, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सीता सिद्धांत एकांश गवाणकर, खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, ब्याउल हक, अब्दुल रहमान, रायपुर से रतन जैन, कोकिला जैन, धनौरी उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया और आयान, आरंग से दीक्षा कश्यप, दिनेश कश्यप, विक्रांत कश्यप, बिलासपुर से वैभव शर्मा, विप्लव शर्मा, गरिमा शर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म चोरी चोरी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत के बोल हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म चोरी चोरी का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए अब सुनिए अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी हैं कोसालपुर से मयंक शर्मा, मीना शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, समृद्धि तिवारी, शिनेन्द्र तिवारी, शिव्या तिवारी, शिवांश तिवारी, रुचि पांडे, रश्मि पांडे, योगेश पांडे और तरुण पांडे। मोहला मानपुर से मालिक राम सिन्हा, तारामती इंदु, सविता देवी सिन्हा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, भोरमदेव से जीवनलाल साहू, राजबाई लोकनाथ, विदिका साहू, भाटापारा से केदारनाथ, भगवती आयुषी, लल्ली जायसवाल, गंडई से मूलचंद पटेल, मीनाक्षी पटेल, मोनिका पटेल और सीमा पटेल, दोराबांदा

भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म वो कौन थी में लता मंगेशकर को, गीत के बोल राजा मेहदी अली खान और संगीत मदन मोहन का।

सुरों का सफर, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में लीजिए आज सुनिए वायलिन वादन पंडित डी के दातार से, राग होगा यमन और पंचम से गारा। लीजिए सुनिए पंडित डी के दातार का वायलिन पर बजाया राग पंचम से गारा।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप पंडित डी के दातार का वायलिन पर बजाया राग यमन सुनेंगे। अभी आप सुन रहे थे राग पंचम से घारा।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप पंडित डी के दातार का वायलिन पर बजाया राग यमन और राग पंचम से गारा सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है, हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के

0: प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed the

हेलो, टॉक स्टूडियो से समय मिला लीजिए। 5:29, 31, 32, 33 सेकंड। वर्क स्टेशन 1।

आर्टिस्ट साइड माइक नंबर 1 5:30:40:41:42 सेकेंड। हेलो माइक टेस्टिंग माइक नंबर 2 5:30:49:50:51।